और कहा जाएगा कि जिस तरह तुमने उस दिन के आने को भुला रखा था उसी तरह आज हम तुम्हें भुला देंगे और तुम्हारा ठिकाना दोजख है और कोई तुम्हारा मददगार नहीं।

فلا يحزنك قوم.

وضرب لنا

0: Coming up next, 101 News Headlines. News Headlines.
1: सुबह के 7 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज पीर है, ज़िलहज की 29 और जून की 15 तारीख। ये रेडियो पाकिस्तान है। तरन्नुम हामिद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि अमरीका और ईरान के दरमियान तफसीली मुज़ाकरात के बाद अमन मुआहिदा तय पा गया है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि अमरीका और ईरान के दरमियान अमन मुआहिदे पर दस्तखत की बाकायदा तकरीब जुमे को स्विट्ज़रलैंड में होगी। कौमी असम्बली और सैनेट में आज वफाकी बजट पर बहस जारी रहेगी। मुहर्रम अल हराम 1448 हिजरी का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज लाहौर में होगा। ग्रुप 7 के रुकन ममालिक का 3 रोजा इजलास आज फ्रांस में शुरू होगा। और रात बर्मिंघम में खवातीन के आईसीसी टी20 आलमी कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया। और अब खबरें तफसील के साथ। वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि तवील और तफसीली मुज़ाकरात के बाद अमरीका और ईरान के दरमियान अमन मुआहिदा तय पा गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि हमें इस अमन मुआहिदे के ऐलान पर खुशी है, क्योंकि दोनों फरीकों ने लबनान समेत तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाइयों के फौरी और मुस्तकिल खात्मे का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मुआहिदे पर दस्तखत की सरकारी तकरीब जुमे को स्विट्जरलैंड में होगी। शहबाज शरीफ ने तनाजे के सिफारती हल की जानी पेशरफ्त के लिए अमरीका और ईरान के अज़्म को सराहा। उन्होंने सालिसी के अमल में तआवुन पर कतर की क़यादत का भी शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब और तुर्की की क़यादत के सिलसिले में इनकी भरपूर खिदमात पर खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि अब जबकि मुआहिदा तय पा चुका है, सालिक ममालिक फरीकैन के दरमियान इस हफ्ते मुतादद मुलाकातों के इनेकाद में सहूलत फराहम करेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि ये बातचीत तकनीकी मुजाकरात और मुआहिदे की सरकारी दस्तखती तकरीब के लिए बुनियाद फराहम करेगी। कौमी असम्बली में आइंदा माली साल के बजट पर बहस जारी है। बहस में हिस्सा लेते हुए वजीर इत्तला'आत अताउल्लाह तारर ने कहा कि आइंदा माली साल का बजट अवामी रिलीफ पर मबनी है और इसमें मुआशरे के तमाम तबकात की जरूरियात को मद्देनजर रखा गया है। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ हलकों, माहिरीन माशियात और राय साज शख्सियात की जानिब से बजट पर मुस्बत रद्द अमल का इजहार किया गया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत हिजब इख्तिलाफ की तामीरी तजावीज का खैर मकदम करती है, ताहम बजट में मुतारिफ कराए गए मुस्बत इकदामात अपोजिशन अराकीन की जानिब से भी तस्लीम किया जाना चाहिए। वजीर इत्तला'आत ने कहा कि मौजूदा हुकूमत की मुसलसल कोशिशों के नतीजे में मुल्क में मौशी इस्तेहकाम

हासिल किया है। एफबीआई में इस्लाहात का हवाला देते हुए ताला तारर ने कहा कि ऐसा निज़ाम मुतारिफ कराया गया है जिसके तहत टैक्स अदा करने वालों पर टैक्स नादहिंदगान का बोझ नहीं पड़ेगा। कौमी असेंबली में बजट पर बहस के दौरान एमएनए शाहिदा बेगम ने कहा कि गरीब आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए हुकूमत को जनरल सेल्स टैक्स की शरह में कमी पर गौर करना चाहिए। सैयद वसीम हुसैन ने कराची को दरपेश मसाइल को उजागर करते हुए उनके हल पर जोर दिया। एहसिन इकबाल ने सैयद वसीम अहमद के नुकात का जवाब देते हुए कहा कि हैदराबाद सखर मोटरवे आइंदा 3 से 4 साल में मुकम्मल कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि M9 मोटरवे पर काम शुरू कर दिया गया है जबकि K4 मंसूबा रवां साल के आखिर तक मुकम्मल हो जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि वफाकी हुकूमत ने हैदराबाद में एक यूनिवर्सिटी के क्याम के लिए भी ग्रांट फ्राहम की है। कौमी असेंबली में बहस के दौरान मियां खान भुट्टी ने बजट में ऐलान करदा रिलीफ इकदाम को सराहा। मिर्जा इफ्तार बेग ने कहा कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट नेवी को कम करके 50 रुपए किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि रियल इस्टेट शोबे को दी गई रियायत से इस शोबे में सरमायाकारी बढ़ेगी। मीर खान मोहम्मद जमाली ने कहा कि बजट में जरई शोबे को नजरअंदाज किया गया है और जरई अशिया की बुलंद कीमतों का हवाला दिया। जमील जमान ने हैदराबाद सखर मोटरवे की जल्द तकमील का मुतालबा किया। ऐवान का इजलास आज दिन 11 बजे फिर शुरू होगा। सेनेट का इजलास आज दोपहर 12:30 बजे पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में फिर शुरू होगा। ऐवान में मालियाती बिल 2026 के हवाले से कौमी असेंबली को सिफारिशात पेश की जाएंगी। वजारत ने मौसमियाती तब्दीली और माहौलियाती हम आहंगी के लिए आइंदा माली साल के सरकारी शोबे के तरक्याती प्रोग्राम के तहत शजरकारी शहरी माहौल की मजबूती और मौसमियाती तब्दीली से मुताबिकत पैदा करने के इकदाम की मद में 2,47,80,00,000 रुपए मुख्तस किए गए हैं। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक ये फंड्स पाकिस्तान के बढ़ते हुए माहौलियाती चैलेंजेस से निमटने की सलाहियत को मजबूत बनाने के लिए मुख्तस किए गए हैं। वजारत मौसमियाती तब्दीली के तर्जुमान मोहम्मद सलीम शेख ने कहा कि ये फंड्स मौसमियाती तब्दीली के असरात से मुतालिक बढ़ते हुए खदशात के पेश नजर मुख्तस किए गए हैं, जिनमें ग्लेशियर्स का पिघलाव, ग्लेशियाई झीलों के फटने से आने वाले सैलाब, आबी किल्लत, जंगलात का कटाव, शदीद गर्मी की लहर, जंगलात में आतिशजदगी और जमीन की जरखेजी में कमी जैसे खतरात शामिल हैं। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। सरमायाकारी बोर्ड के वफाकी वजीर कैसर अहमद शेख ने सरमायाकारी जिद्दत साजी और बरामदात पर मबनी तरक्की के जरिए पाकिस्तान के कारोबारी माहौल को मजीद मजबूत बनाने पर जोर दिया है। कराची में 17वीं ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 की तकरीब से बतौर मेहमान खसूसी खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ये तकरीब पाकिस्तान की कारोबारी बरादरी की खिदमात को सराहने और इनकी हौसला अफजाई के लिए एक अहम प्लेटफार्म है। कैसर अहमद शेख ने कारोबारी शख्सियात को मुआशी तरक्की की रीढ़ की हड्डी करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान को आलमी सतह पर कारोबार और सरमायाकारी के लिए एक मसाबकती मरकज के तौर पर फरोख दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत गैर जरूरी रुकावटें दूर करने और सरमायाकारी में सहूलत फराहम करने के लिए इस्लाहात मुतारिफ करा रही है। आजाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने कलदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी की जानिब से किए जाने वाले बेबुनियाद और गुमराहकुन प्रोपेगंडे को मुस्तरद कर दिया है। आईजी पुलिस आजाद जम्मू कश्मीर के तर्जुमान के मुताबिक मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक रखने वाले मुतादद अफराद कमेटी की क्यादत के तर्ज अमल से मायूस होकर अपने घरों को वापस जाना चाहते हैं। तर्जुमान ने कहा कि कमेटी ने लोगों को तरगीबात और गुमराहकुन मालूमात के जरिए रावला कोर्ट में इकट्ठा किया। उन्होंने कहा कि एहतजाज छोड़ने के ख्वाहिशमंद अफराद को कलदम कमेटी से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए धमकियां दी जा रही हैं। पुलिस तर्जुमान ने इस तासुर को सख्ती से मुस्तरद किया कि एहतजाज छोड़ने वाले अफराद को गिरफ्तार किया जाएगा और ऐसी इत्तलात को झूठ, बेबुनियाद और गलत मालूमात पर मबनी मुहिम करार दिया। उधर इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ने घरों को वापस जाने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए सफरी सहूलियात फराहम करने का ऐलान किया है। तर्जुमान ने बताया कि रावला कोर्ट में इन अफराद की हिफाजत और वापसी को यकीनी बनाने के लिए सहूलत मराकज कायम कर दिए गए हैं। उन्होंने एहतजाज खत्म करके वापस जाने वाले अफराद पर जोर दिया कि वो पुलिस से राबते में रहें और बिला खौफ व खतर अपने घरों को वापस जाएं। मुहर्रम अल हराम 1448 हिजरी का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज लाहौर में होगा। कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद इजलास की सदारत करेंगे। जोनल और जिले रुयत हिलाल कमेटियों के इजलास अपने मुतालिका हेडक्वार्टर्स में मुनक्किद होंगे। ग्रुप 7 के रुकन ममालिक का 3 रोजा इजलास आज फ्रांस में शुरू होगा। इजलास के एजेंडे में ईरान

0: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
1: निकाह खुशियों भरे एक खूबसूरत सफर का आगाज है। इसका बरवक्त इंदराज एक कानूनी तकाजा है जो इस सफर को महफूज बनाता है। निकाह के बाद एक अहम काम अक्सर नजरअंदाज हो जाता है जो आगे चलकर परेशानी का बाइस भी बन सकता है। लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील यकीनी बनाएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में शादी का इंदराज कानून की नज़र में आपकी अज़दवाजी हैसियत का एतराफ़ है जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड और दीगर सरकारी अमूर में मददगार साबित होता है। यूनियन काउंसिल में निकाह का इंदराज होने के बाद करीबी नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
2: सूरज की किरणें हर सुबह लाती हैं एक नया उम्मीदें सफर, पर बिजली के बिल और लोड शेडिंग का अंधेरा करता है सबको फिक्रमंद। अब अंधेरों को कहो अलविदा और रोशनी को अपनाओ। एई पावर से अपने घर में रोशनी ले आओ। एई पावर, दी अल्टीमेट पावर सॉल्यूशन।
3: हमसे है रोशन ये जहां,
4: हमसे है

0: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
1: निकाह खुशियों भरे एक खूबसूरत सफर का आगाज है। इसका बरवक्त इंदराज एक कानूनी तकाजा है जो इस सफर को महफूज बनाता है। निकाह के बाद एक अहम काम अक्सर नजरअंदाज हो जाता है जो आगे चलकर परेशानी का बाइस भी बन सकता है। लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील यकीनी बनाएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में शादी का इंदराज कानून की नज़र में आपकी अज़दवाजी हैसियत का एतराफ है जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड और दीगर सरकारी अमूर में मददगार साबित होता है। यूनियन काउंसिल में निकाह का इंदराज होने के बाद करीबी नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
2: This is FM 101.
3: All the way live from the federal capital city of Pakistan. This is FM 101.
4: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 F.

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: खानदान में किसी फर्द की वफात बिलाशुबा एक सानिया है, लेकिन मरहूम का शनाख्ती कार्ड मंसूख कराना बहरहाल जरूरी है ताकि उसके गलत इस्तेमाल की रोकथाम हो और विरासत की तकसीम में कोई परेशानी ना हो। याद रखें, नादरा यूनियन काउंसिल में इंदराज की बुनियाद पर मतवफी का शनाख्ती कार्ड मंसूख करता है और आपको उन तमाम मराहिल की तकमील में हर मुमकिन मावनत फराहम करता है। नादरा ने यूनियन काउंसिल में वफात का इंदराज आसान बनाने के लिए पाकिस्तान भर के अस्पतालों में जदीद तरीन डेथ नोटिफिकेशन टूल्स फराहम कर दिए हैं। अस्पताल में अपने खानदान के किसी फर्द की वफात पर अपना और मतवफी का शनाख्ती कार्ड लेकर अस्पताल में मौजूद रजिस्ट्रेशन काउंटर पर तशरीफ ले जाएं और वफात का इंदराज करने के बाद रसीद हासिल करें। इसके साथ ही आपको दिए गए नंबर पर नादरा की जानिब से SMS रसीद भी मौसूल हो जाएगी। वफात के 30 दिन के अंदर अस्पताल की रसीद के हमरा अपनी यूनियन काउंसिल में तशरीफ लाएं और वफात का इंदराज कराने के बाद डेथ सर्टिफिकेट हासिल करें। इसके बाद नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं और मतवफी का शनाख्ती कार्ड मंसूख कराएं। नादरा की पाक ID मोबाइल ऐप के जरिए आप यूनियन काउंसिल से डेथ सर्टिफिकेट और नादरा से बेफॉर्म घर बैठे भी बनवा सकते हैं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।

Isis, Eva, Lana, Lana, Lana, Lana.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

0: स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
2: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: दिस इज FM 101.1
4: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.1।
5: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: E-Power, the ultimate power solution.
1: शादीशुदा जोड़ों के दरमियान अलहदगी या तलाक जिंदगी की तल्ख हकीकतों में से एक है। ऐसे मौके पर एक अहम कानूनी जिम्मेदारी अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, जो आगे चलकर गैर जरूरी पेचीदगियों का सबब बन सकती है। लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं। तलाक या खुला के बाद नादरा रिकॉर्ड में अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत का दुरुस्त रिकॉर्ड आपकी कानूनी हैसियत का बाकायदा एतराफ है, जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, बच्चों के बेफॉर्म शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड की दुरुस्ती और दीगर सरकारी अमूर में आपके लिए आसानी पैदा करता है। तलाक या खुला की कार्रवाई और यूनियन काउंसिल में इंदराज मुकम्मल होने के बाद करीबी नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
0: सुनते रहिए FM 101.1।
2: There's music and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

Continuous hits.

0: Coming up next, 101 News Headlines. News Headlines.
1: दिन के 10 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। आमिर हाशमी से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि अमरीका और ईरान के दरमियान तफसीली मुज़ाकरात के बाद अमन मुआहिदा हो गया है। कौमी असेंबली और सेनेट में आज वफाकी बजट पर बहस जारी रहेगी। मुहर्रम उल हराम 1448 हिजरी का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज लाहौर में होगा। और बुजुर्गों के साथ रानावर सलूक के बारे में आगाही का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है।
2: Hey, we'll be back after the-

0: क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
3: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
2: नया लाइव बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइव बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
4: दिस इज FM 101
5: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101।
6: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
7: सूरज की किरणें हर सुबह लाती हैं एक नया उम्मीद सफर, पर बिजली के बिल और लोड शेडिंग का अंधेरा करता है सबको फिक्रमंद। अब अंधेरों को कहो अलविदा और रोशनी को अपनाओ। AE पावर से अपने घर में रोशनी ले आओ। AE पावर, द अल्टीमेट पावर सॉल्यूशन।
8: हमसे है रोशन ये जहां,
9: हमसे है

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

I'm crazy.

सुनते रहिए FM 101 101।

Hey, I'm crazy.

0: Coming up next, 101 News Headlines.
1: दिन के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। आमिर हाशमी से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि अमरीका और ईरान के दरमियान तफसीली मुज़ाकरात के बाद अमन मुआहिदा तय पा गया है। आलमी रहनुमाओं ने अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहिदे तक पहुँचने में पाकिस्तान और दीगर ममालिक के किरदार को सराहा है। मुहर्रम उल हराम 1448 हिजरी का चांद देखने के लिए मरकजी रोहित-ए-हिलाल कमेटी का इजलास आज लाहौर में होगा। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार के दौरान तेजी का रुझान देखा गया और 100 इंडेक्स में 3300 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया।
2: Hey, we'll be back after the

0: स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: दिस इज FM 101.1।
4: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लारकाना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.1।
5: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अस्सलामुअलैकुम एफएम 101 सुनने वाली तमाम खूबसूरत बातों को इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ होंगे खैर आफियत से होंगे, ज़िंदगी के रंगों को खूब इंजॉय किया जा रहा होगा और वहाँ उस इंजॉयमेंट में एफएम 101 को अपने साथ रखे हुए होंगे। जी बिल्कुल, मैं आपके साथ आपकी अपनी आरजे ज़ुबैया शफीक आपके अपने प्रोग्राम लेडीज़ लाउंज में। लेडीज़ लाउंज में मेरा आपका साथ हुआ करता है हर पीर की सुबह 11 से 1। आज इतने दिनों बाद हमारी हो रही है मुलाकात, बातचीत क्यों हो रही है भला? जालिम समाज ने कोशिश तो बहुत की पर नहीं, कुछ आपके अपने होते हैं ना, आपके पास आपके रास्ते में आने वाली हर्डल्स को रोक लेते हैं, कहते हैं मैं रोक ले आई। तो बस ऐसी ही हर्डल्स को अबूर करते हुए आ गई मैं। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं नहीं, आज तो मैं जाऊंगा। एनीवेज जी, 15 जून है आज 2026 और जून के महीने की जब बात करते हैं, ओए होए होए होए गर्मी की शिद्दत। जो लोग जून के महीने में पैदा हुए हैं ना, जिनकी बर्थ डेट है जून में, सलाम है तानू। कभी कभी मैं गुस्सा करूँ ना तो वो मेरी कुछ फ्रेंड्स कहती हैं यार तेरा कसूर नहीं है, तेरी डेट ऑफ बर्थ जून में है। तो ऐसे बस कुछ होता है। एनीवेज जी, गर्मियों की छुट्टियां हो गई, जून की जब बात होती है तो जहाँ बहुत सारे मामला होते हैं, आ गया ओके ओके, जहाँ बहुत सारे मामले होते हैं वहाँ पे जून पे गर्मियों की छुट्टियों की बात होती है, और गर्मियों की छुट्टियों की बात हो बच्चों की खुशियाँ, मैं कहती हूँ अखीर अखीर लेवल। अच्छा पहले होता था बच्चे कहते थे नानी घर जाना, दादी घर जाना, अब बच्चे कहते हैं नहीं नहीं सानू घूमन फिरन लेके जाओ। और अगर नानी दादी के घर में इंटरनेट नहीं है ना, वाईफाई नहीं लगा हुआ, वहाँ सिग्नल्स नहीं आते, तो कोई जरूरत नहीं है हमें नानी दादी की, हम अपने घर में ठीक है, हम वीडियो कॉल कर लेंगे उन्हें। एनीवेज जनाब, बात करेंगे हम थोड़ी सी गर्मियों की छुट्टियों के हवाले से। इसके साथ साथ ये भी मैं आपको कहना चाहूंगी, देखिए गर्मियों की छुट्टियां होती है गर्मी से बचाव के लिए, इसलिए नहीं होती है कि आप सुबह 8 बजे जो है वो बच्चों को बाहर निकाल दें या उनकी बात सुन के कहेंगे जी ठीक है जाओ खेलो, और वो सारा दिन जो है वो गर्मी में बाहर बैट बॉल खेल रहे हैं, वैसे फिर रहे हैं, इतना रोला इतना शोर। सुकून करो भाई, दूसरों को भी सुकून करने दो, दूसरों की जिंदगियों को भी आराम आने दो और खुद की जिंदगी को भी आराम आने दो। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम्स जनाब आलिया स्टार्ट हो चुके हैं, 12वीं का कल पहला पेपर है, और 12वीं वालों तो कहते हैं 11वीं का पता 12वीं में चलता है, ऐसा वैसे क्यों कहते थे? मुझे पता क्या लगा जब मैंने 12वीं की, तो मुझे पता इस वजह से लगा, मुझे लगा कि ये बात हकीकत इस वजह से है कि 12वीं में आता था इंग्लिश में मिस्टर चिप्स, उदो मैनू लग पता गया कि 11वीं का पता वाकई 12वीं च लगता है। 11वीं की इंग्लिश बड़ी आसान थी, 12वीं में मिस्टर चिप्स ही नहीं निकलता था भाई। एनीवेज जी, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं, पोस्ट में देखती हूँ अभी मेरी अपडेट हो चुकी है या नहीं हो चुकी, वैसे मैंने भिजवा तो दी है, अभी रास्ते में होगी अगर नहीं हो चुकी, और अगर हो चुकी है तो उस पर कॉमेंट करें, एफ एम 101 के ऑफिशियल पेज पे जाएं, पोस्ट अपडेट हो चुकी है उस पर कॉमेंट करके हमारे साथ शामिल होइएगा। 0421100101 अगर हमारे है ऑफलाइन कॉल का नंबर होगा 0421100101, आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। खूबसूरत सा कलाम, इसके बाद वापस आएंगे। ड्राइव कर रहे हैं तो ध्यान से अपने साथ इर्द गिर्द वालों का ख्याल, गर्मी की लगी हुई जो चोट होती है ना, खासकर जो जख्म होता है वो खराब हो जाता जी। हमारे पास बड़े ऐसे केस आते हैं, बाद में पट्टी तो होती नहीं है उस पर, खुला रखना पड़ता है, और खुला रखा नहीं जाता, पट्टी होने मतलब होती नहीं, इसलिए एहतियात इलाज से बेहतर है। ओके स्टिक अराउंड।

जी वेलकम बैक, दिस इज एफएम 101 लाहौर लाइव स्टूडियो, इट्स मी जुबिया शफीक। 11:20 हो चुके हैं और बात हम कर रहे थे गर्मी की छुट्टियों के हवाले से, बात हम कर रहे थे जून के हवाले से, बात हम कर रहे थे गर्मियों के हवाले से, और इसके साथ साथ हम बात कर रहे थे नानों और दादों के पास जाने की जो एक्साइटमेंट होती थी, नानी के घर और दादी के घर जाने की जो एक्साइटमेंट होती थी ना बच्चों में, आजकल वो साथ हो गई है, इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हो गई है। अगर इंटरनेट है तो फिर प्यार है, और अगर नहीं है, मेरी खाला की छोटी सी बेटी है, उसकी एज होगी 4 से 5 साल, तो जब वो देखती है कि मोबाइल मेरे एक्सेस में है, किसी के भी घर में मोबाइल एक्सेस में है, इंटरनेट एक्सेस में है, तो फिर उस घर के जो मकीन होते हैं, जो उनका कोई फ़र्द होता है, उसके साथ उसको बहुत प्यार होता है। लाइक वो हमारे घर आती है, अगर वो देखती है ना कि आप ही का एक मोबाइल पड़ा हुआ है, उस पर इंटरनेट चल रहा है, और वो कहेगी मुझे तो आपसे प्यार ही बहुत है, वो साथ चिपकी रहेगी, साथ बैठी रहेगी, क्योंकि मैंने सोना भी आपके साथ है। लेकिन जब उससे फ़ोन ले लो, फिर वो कहती, वो जानती नहीं है, पहचानती नहीं है। और बच्चों के इग्नोर करने की इतनी अजीब सी आजकल ना, बच्चे इग्नोर बड़ा प्यारा सा कर रहे होते हैं, उनको बुलाते जाओ, जो उन्होंने बात नहीं सुननी वो उन्होंने नहीं सुननी, वो उन्होंने इधर उधर मुंह कर लेना है। एनीवेज जी, आज 15 जून बुजुर्गों से प्यार से बात करने का, बुजुर्गों के साथ अच्छे तरीके से रहने का, उनकी टेक केयर करने का आलमी दिन मनाया जाता है आज। तो आज हम बात भी थोड़ी सी इस हवाले से करेंगे, तरबियत में वो कौन सी ऐसी चीज शामिल होती है जो इंसान को एक अच्छा इंसान बनाती है। और मुझे कभी कभी लगता है, देखिए एजुकेशन बहुत जरूरी है, मस्ट इम्पॉर्टेंट है, एजुकेशन आपको संवारती है, निखारती है, लेकिन कुछ चीज़ें आप घर से सीखते हैं। वो कहते हैं कि पहली दर्सगाह माँ की गोद होती है, और माँ की गोद से आप बहुत कुछ सीखते हैं। बच्चा जब तक बोल नहीं रहा होता, 2 साल 2.5 साल तक वो बोल नहीं रहा होता, वो लर्न कर रहा होता है, वो लर्निंग प्रोसेस में होता है। उसके बाद जिस टाइम पे वो बोलना स्टार्ट करता है, तो क्या हमने कभी सोचा है कि अगर पख्तून का बच्चा है तो वो पश्तो कैसे बोलता है डायरेक्ट, अगर पंजाबी का बच्चा है तो वो पंजाबी कैसे बोलता है, अगर अंग्रेज़ का बच्चा है तो वो अंग्रेज़ी कैसे बोलता है, अगर बलूची का बच्चा है तो बलूची कैसे बोलता है, मतलब डायरेक्ट पहला वर्ड जो बोलता है या वो जब बोलना स्टार्ट करता है तो कैसे वो बोलता है। जब वो बोलता है तो वो वही बातें करता है जो बात, जिस जुबान में आप बात कर रहे होते हैं, जिस तरह से आप एक्ट कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब तो ये है ना, वो 2-2.5 साल वो लर्न कर रहा होता है। तो आज के प्रोग्राम में आपने मुझे बताना है कि तरबियत में ऐसी कौन सी चीज़ शामिल होनी चाहिए जिसके बगैर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कोई खला रह जाता है। और आपको क्या लगता है कि अभी की हमारी जो जनरेशन आ रही है, अल्फा है, जेन जी है, इसमें किस चीज़ की थोड़ी सी आपको लगता है कि ज़रूरत है। और भी जो भी अच्छी बात आप करना चाहें कर सकते हैं, FM 101 के ऑफिशियल पेज पे आप जाएंगे, पोस्ट अपडेट हो चुकी है, उस पर कॉमेंट करेंगे और कॉमेंट करके हमारे साथ शामिल हो जाइएगा। यहाँ भी एक अदद चलाने लगी हूँ मैं सॉन्ग, बाज़ दफ़ा ना कुछ चीज़ें बड़ी ही अजीबोगरीब आपकी ज़िंदगी में चल रही होती है। मैं कह रही थी, मैं सोच रही थी यार, लाइट लास्ट वीक पे मेरी आपसे मुलाकात ना होना, बात ना होने की वजह ये थी कि थोड़ा सा इशू इसमें था, और आज जो है हमारी कॉल का कोई थोड़ा सा सिस्टम जो है ना, वो इधर उधर मुझे नज़र आ रहा है। नंबर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, 04-211-000-101 हमारा डायलिंग नंबर है, अगर लग गई तो आपकी किस्मत, ना लगी तो फिर भी आपकी किस्मत। ये सुनिएगा, तौबा तौबा, ऐसे सुबह सुबह हालात यही हैं, एक मसला हल करो नया मसला आ जाता है, वजह क्या है कोई पता है। कभी कभी मुझे लगता है कि वाकई शायद क्या मैं पनौती हूँ, क्या वाकई मैं ऐसी हूँ। कॉल आ गई है, ओके थैंक यू, आप ना होती तो क्या होता। हमारे साथ साथ रहिएगा, 04-211-000-101 हमारा डायलिंग नंबर है, और इसके साथ साथ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, FM 101 के ऑफिशियल पेज पे आप जाएंगे, मैसेज कर सकते हैं 4471 पे। Enjoy this beautiful track.

इश्क सतावे। अच्छा आजकल ना जब तक किसी चीज का भड़क रहे होते हैं

फिर जब सामने वाला नहीं ना मनाता फिर लग पते जाते हैं। तो इसलिए ना थोड़ा सा इन चीजों पे भी ख्याल रखा करें। वैसे भी आजकल गर्मियां हैं, गर्मियों में बीपी या तो बहुत ज्यादा लो हो जाता है। अगर मैं बात करूं तो बाहर निकलते वक्त पानी हूँ, रंगे शरबत और रंग बिरंगे डिटॉक्स वाटर जो हैं वो मार्केट में आ चुके हैं, बताए जा रहे होते हैं, और हम वो डिटॉक्स वाटर बनाने के चक्कर में वाटर भी नहीं इंटेक करते। तो वाटर इंटेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है हमेशा।

धोखा दे रहा है और ये कॉल्स भी मुझे धोखा दे रही हैं। आपने धोखा नहीं देना। बात मैं कर रही हूँ कि तरबियत में ऐसी कौन सी चीज इंक्लूड होनी चाहिए आपको लगता है जिसका कहीं ना कहीं फुकदान पाया जा रहा है, ये आपने मुझे बताना है। और इसके साथ साथ मुझे ये भी बताइएगा कि गर्मियों की छुट्टियां कैसी गुजर रही हैं, बच्चियों की तो अच्छी और माओ के लिए तो मैं यही कहूंगी हिम्मतें मर्दा मदद खुदा, थोड़ी सी हिम्मत रखे आगे हो ना, फिर आप जब हमसे दूर जाएंगे तो फिर ऐसे ही आएंगे हमारे पास वापस। अनीस जी आपके बहुत सारे पैगाम मेरे सामने मौजूद हैं लेकिन मैं इनको शामिल करूंगी थोड़ी देर बाद, वापस आती हूँ। ये गाना आपके लिए लगा रही हूँ ना मैं, एक गाना तुसी सुनना है और फिर हम वापस आते हैं। कमेंट्स आपकी शामिल करूंगी, एफएम 101 के ऑफिशियल पेज पे जाइएगा, पोस्ट अपडेट हो चुकी है, इस पे कमेंट कीजिएगा। और वैसे मैंने आज कोशिश की थोड़ी सी मैं लाइव स्ट्रीम पे ना हूं, आऊं लाइव स्ट्रीम पे, लेकिन नहीं, मैं आरजे डॉक्स थोड़ी हूं, इतनी चमक धमक के साथ कैसे आ सकती हूं मैं। यहां बहुत मसले मसाइल चल रहे हैं इंटरनेट के, मैं ग्रीप। एनीवेज जी सुनिएगा ये ब्यूटीफुल सा ट्रैक और फिर हम वाके हम वापस आते हैं। आप ये जो हंसती है ना, ये गाना मैंने अपनी मर्जी

ऑन करना सीखें। कोई भी इंसान है आपके साथ है ना, उसे ऑन करना सीखें। और अगर आप उसको ऑन करने से कतरा रहे हैं ना, घबरा रहे हैं, छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है ऐसे रिश्तों को पालने की।

जी वेलकम बैक, दिस इज एफएम 101 लाहौर लाइव स्टूडियो, इट्स मी जुबिया शफीक। मेरा ख्याल ये है कि मैं अपना नाम बदल के ना कोई और ही नाम रख लूं। मेरा दिल पता नहीं क्यों ये कह रहा है। क्या ख्याल है, रखना चाहिए कि नहीं? आप मेरे सामने आके बैठती ना तो मैं जरा एक्सप्रेशन भी साथ देखती, ऐसे मुझे एक्सप्रेशन नहीं नजर आते ना। वो कहते हैं कि या तो किसी की मान के चल पड़ो या खुद किसी की मनवा लो, किसी से मनवा लो। है साड़ी तो मान नहीं रहा कोई, तो मैंने कहा मैं ही सिलेंडर कर लेती हूँ। एनीवेज जी, आज हम बात कर रहे हैं, 15 जून है और बुजुर्गों से प्यार उनके एहतराम का आलमी दिन मनाया जा रहा है। आज हम बात करेंगे, मैं अक्सर ये बात करती हूँ कि रिश्ता, हर रिश्ता दुनिया में मिल जाता है। आपकी ज़िंदगी में साथ चलते हुए रिश्ते बनते हैं, रिश्ते बिगड़ते हैं, रिश्ते बिछड़ते हैं, लेकिन जो रिश्ते दोबारा आप नहीं बना पाते वो आपके वालिदैन का रिश्ता है, आपके बहन भाई का रिश्ता है। बाकी रिश्ते ज़िंदगी के साथ चलते हैं। नो डाउट हर रिश्ते की अपनी एक वैल्यू है, अपनी उसके कुछ जो हैं वो स्पेशल चीज़ें होती हैं, लेकिन वालिदैन की जहाँ हम बात करते हैं ना, जहाँ खासकर हम माँ बाप की बात करते हैं, वहाँ पे ये बात ज़रूर जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि ये दो हस्तियाँ ऐसी हैं आपकी ज़िंदगी में कि अगर आपकी ज़िंदगी से ये चले जाते हैं ना तो फिर ज़िंदगी ना कहीं खो सी जाती है। फिर बस ज़िंदा तो रहते हैं आप, ज़ाहरी बात है आपने ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत सारे मामलात करने होते हैं, कुछ चीज़ें मजबूरन करनी होती हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको करनी पड़ती हैं, लेकिन वो जो रिश्ते होते हैं ना वो एक कसक रह जाती है, वो एक तलखी रह जाती है आपकी ज़िंदगी में। इसलिए जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं उनकी खिदमत करें। बच्चे बच्चियाँ जो मोबाइलों के साथ अटैच जुड़े रहते हैं, कानों में हैंड फ्री लगाए रखते हैं और माँ बाप जो हैं वो आवाज़ें देते रहते हैं, ख़ासकर अम्मियाँ आवाज़ देती हैं, बात कहती हैं, तो हम कह देते हैं यार अम्मी ना क्या करें ऐसी बातें। आप जब घर में कहते हैं ना अम्मी बहुत बोल रही हैं आप तो बहुत बोलते हैं। अच्छा मैं अगर अपनी भी बात करूँ, मेरी अम्मा ना मेरी खाला के साथ उनकी बड़ी बॉन्डिंग है, तो फ़ोन पे अक्सर बात करें तो मैं कहती हूँ बाजी बस कर दिया करें, तो कभी ना मुझे खुद ही थोड़ा ख्याल आता है ना यार। तो मतलब ये चीज़ें जो होती हैं ना, छोटी छोटी चीज़ें आपको थोड़ी नोट करनी चाहिए, छोटी छोटी उनकी खुशियाँ। जैसे मदर डेज पे अक्सर, मदर्स डे पे अक्सर मैं बात करती हूँ कि आप ये जो बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे होते हैं, यार एक दिन अगर स्पेशल फील करवाया जा रहा है अपनी माँ को तो क्या हर्ज है इसमें, यार उनको फ्लावर दें। और वैसे भी मंथली आप कहीं उनको साथ में ले जाएं, बाहर ले जाएं, आप कोई आइसक्रीम खिलाने ले जाएं, जूस पिलाने ले जाएं, आप उनको कोई जोड़ा ले दें, आप उनको कोई जूता ले दें, मतलब इस तरह की कोई छोटी छोटी चीज़ ले दें। अम्मियों के लिए तो यही बड़ा, उनकी किचन के लिए कोई एक्सेसरीज ले जाएं यार आप घर, वो इसमें ज़्यादा खुश हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें करना बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम कहते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे ओल्ड एज होम भरे हुए हैं। अभी मैं कल देख रही थी, एक रिपोर्ट चेक कर रही थी, सुन रही थी, तो उसमें वो जो ख़वातीन थीं, जो बुज़ुर्ग ख़वातीन थीं, जो बुज़ुर्ग जो हैं वो मर्द हजरात थे, इतने बुजुर्ग थे यार, उनको देख के वैसे ही वो इतने इनोसेंट लग रहे थे। मुझे ये नहीं समझ आती, पता नहीं वो कौन लोग होते हैं जो इनको अपने घरों से दूर ले जाते हैं, और रीजंस जो होती हैं ना वो बड़ी अजीबोगरीब होती हैं। जो रीजंस क्लेम की जाती है ना वो जी कोई संभालने वाला नहीं है, मैं भी जॉब करता हूँ, मेरी बेगम भी जॉब करती है, ये तंग करती हैं, ये मेरी बेगम से लड़ती हैं, इस तरह की जब रीजंस आती हैं ना सामने तो बड़ी तकलीफ़ होती है। इसलिए इस चीज़ पर थोड़ा सा ख्याल किया करें, आपके जो बुज़ुर्ग हैं ना, और अब तो सोशल मीडिया पे इतनी चीज़ें हैं ना जी, अगर हम ख़वातीन का प्रोग्राम है तो मैं ख़ास कर बात होती है, कहते हैं आप ख़वातीन के ख़िलाफ़ क्यों बात करती हैं, मैं ख़िलाफ़ बात नहीं करती। देखिए आपका रुतबा बड़ा ऊंचा है, आपका रुतबा इस सेंस में ऊंचा है कि आपने पूरे घर को जोड़ के चलना होता है, तो जिससे बंदा ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा होता है ना, बंदा कह भी उसे रहा होता है, जिससे एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा उसे कहना क्यों है। तो इसलिए एक्सपेक्टेशंस मुझे आपसे ज़्यादा होती है, इसलिए मैं आपसे ज़्यादा बात करती हूँ। अगर कभी देखिए हमारी अम्मियाँ भी तो हमें अक्सर बात कर देती हैं ना, डांट देती हैं बिला वजह। मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया था कि जब हमारे खानदान में कोई फंक्शन होता है, कोई प्रोग्राम होता है, कोई घर में कोई इस तरह का इवेंट होता है, मेरी अम्मा का BPM ही हाई हो जाता है। तो यहाँ पर मैं बड़ा इसको जो है वो हंसी खुशी से इसको एक्सप्लेन करती हूँ, हंस हंस के बताती हूँ,
कल को अगर मेरी सास के साथ ये प्रॉब्लम हो, वो थोड़ा सा गुस्सा कर ले, तो मैं कहूँगी ये तो जान के करती हैं, ये तो जान के किसी के सामने मुझे डांट देती हैं। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, इसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी तरफ से तो 100% देना यार, आगे अगले बंदे पे है, डिपेंड करता है कि वो आपको, और मुझे लगता है कि एक वक्त तक अगले को समझ अगर नहीं भी आती ना, तो उसको समझ आना शुरू हो जाती है। वो शायद उस चीज़ को बावर नहीं करवाता, लेकिन समझ आ जाती है। समझदारी की बातें आज मैं इस वजह से ज़्यादा कर रही हूँ कि मैं ना सुबह सुबह बड़ी तपी हुई जे तभी क्यों हुई जी वो तुम पता चल रही है लेकिन जी आप हमारे साथ आने के दो रास्ते हैं, एक तो मैसेज है और एक है जी ऐ तुसी ठक ठक क्यों कर रहे हो, मैं तुम तो सामने बिठाया सी अच्छा एक तो जी मैसेज है, मैसेज के जरिए आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं, दूसरा कमेंट्स के जरिए शामिल हो सकते हैं। बहुत सारे कमेंट्स मेरे सामने मौजूद, लेकिन मेरा ख्याल क्या कहता है, मेरा ख्याल कहता है ओके ओके ओके, ये नहीं ये सही, सुने ये ट्रैक मेरे वापस आ गए, मैंने आपके सारे मैसेज पढ़ देने हैं, इसलिए आप मुझे मज़ीद मैसेजेस करें, क्योंकि अब मैसेज ही पढ़ने हैं हमने, कॉल तो है नहीं। वैसे मैं ना कोशिश करती हूँ अभी थोड़ा सा अपनी लाइव स्ट्रीम पे लाइव आने की, ज़ुबिया शफीक के पेज से लाइव आऊँगी, जो लोग मेरे पेज को जानते हैं वहाँ से मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा सा, तो वहाँ ज़रा आप आ जाएं। Yes. शुरुआत मैनू दस रही थी थोड़ा स्लो तो जा रहे हो, लेकिन नहीं नहीं स्टिक अराउंड जी।

जी वेलकम बैक, दिस इज एफएम वाला हॉल लाइव स्टूडियो, इट्स मी जुबे शफीक। 11:53 हो चुके हैं और आपके बहुत सारे पैगाम मेरे तक पहुंच चुके हैं, उनको मैं शामिल करूंगी। जिन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया उनको बताते चले कि आप हमारे शामिल हो सकते हैं। एफएम 101 के ऑफिशियल पेज पे आप जाएंगे, पोस्ट अपडेट हो चुकी है, उस पर कमेंट करेंगे और कमेंट करके हमारे साथ शामिल हो जाएंगे और मुझे ये बताएंगे कि ये गर्मियों की छुट्टियों के जो मामलात हैं, ये बच्चों के साथ आप भी इंजॉय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अब कॉल तो है नहीं, वरना फिर मैं आपसे कोई एक रेसिपी पूछ लेती। कभी किसी ने वो पन्ना खाया, पन्ना पिए, कच्ची केरियों का शरबत होता है, आम पन्ना बनाना बताऊंगी आपको। इस हफ्ते मैंने पिया है, सुना था लेकिन पी लिया मैंने, बड़ा मजे का था और ठंडा होता है, उसकी तासीर ठंडी होती है। अच्छा जी, कुछ पैगाम को शामिल करते हैं हम और इनको सीधा पदरा करके ना फिर मैं शामिल करती हूँ। मैं आपसे आज पूछ रही हूँ कि तरबियत में ऐसी कौन सी एक चीज आपको लगता है कि इंक्लूड होनी चाहिए, कि जो पहले चीजें सिखाई जाती थी वहां कहीं कहीं रुझान कम होता जा रहा है, या कुछ चीजें क्या आपको लगता है कि हमारी सिखाने में कमी रह रही है, या फिर बच्चे सीखना नहीं चाह रहे, कुछ चीजें हम बच्चों के साथ मैच नहीं कर पा रहे, या बच्चे हमारे साथ मैच नहीं कर पा रहे। हम भी तो अपनी अम्मियों की उस टाइम पे बातों के साथ मैच नहीं करते थे, लेकिन अम्मियाँ मैच करवा लेती होती थी। अम्मियाँ चपेड़े मार मार के, मुझे याद है मैं छोटी होती थी, वो एक क्रीम होती थी, आज हमें जी रिसेंटली पता चला है मुझे कुछ टाइम पहले, कि वो तो बालों के लिए क्रीम है, वो वैसलीन जो है वो बालों पे लगाने के लिए। वो रिलेट करेंगे मेरे साथ, मेरे बहुत सारे बहन भाई, ऑरेंज से कलर की एक वैसलीन होती थी, और मेरी अम्मी तो हाथों पैरों पे लगा दिया करती थी। वो वाली गई हुई है ना, वो बालों की है भाई, उस पे लिखा हुआ है, बहुत बड़ी सारी कोटिंग में लिखा हुआ है, वो बालों के लिए है। सोचे हम कितने मासूम बच्चे, हाँ मुंह पे भी वही, हाथों पे भी वही, हाँ पैरों पे भी तो हम इतने मासूम, और हमारे बच्चे हम कोई चीज लेकर आए कहते हैं ठहरे जरा इसके पढ़ लेने देना कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, कौन कौन सी चीजें पाई जाती है। एनीवेज, इरफान खान हमारे साथ मौजूद है, नाइस कहती हैं, फरहान इकबाल हैं, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम फरहान, कहते हैं जी हाउ आर यू फीलिंग टुडे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फाइन हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। और कहते हैं मुल्तान से, हुए होए होए होए मुल्तान वाले लोग जो है ना, सलाम है आपको। वैसे मैं आजकल मुल्तान की बड़ी तारीफें करती हूँ, पूछो क्यों, सीजन है भाई मुल्तान वालों का, आजकल आप लोग किंग हो, क्योंकि जो फ्रूट्स का जो एक किंग है वो आपके शहर से मुंसलिक है, तो इसलिए। फरहाद मेमन कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, क्या हाल है, खुश हो, ठीक हो? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, कहते हैं खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। कंवल नाज आ गई पंजाब यूनिवर्सिटी से, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आज जुबिया शफीक? मैं ठीक हूँ, सही हूँ फिलहाल, तो आगे का पता नहीं है। वेलकम जी आयानु कहती हैं, शमसी लिस्टन रेडियो ग्रुप वालों की तरफ से भी सलाम। ओके वालेकुम अस्सलाम, अमरजा चौधरी साहब आ गए, अस्सलाम वालेकुम अमरजा चौधरी साहब का भेजे ना, ये मेरे पेज में भी मैसेज आया हुआ था कि आज कॉल्स हैं, मैं कहा भाई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो डियर स्वीट आरजे, कैसी हैं? उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगी, अल्लाह पाक से दुआ है कि आप हमेशा खुश रहो और शाद रहो, आबाद रहो जिंदगी। अच्छा, बहुत सारी आपने दुआएं दी रजा साहब, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, जजाकल्ला खैर, आप इतनी दुआएं देते हैं। और यकीनन जो दौर चल रहा है ना, इसमें दुआ किसी के लिए कर देना ही बहुत मायने रखता है, टाइम ही नहीं होता किसी के पास दूसरों के लिए, तो फिर जब आप दुआ कर देते हैं ना, तो इन दुआओं की मुझे बहुत ज़रूरत रहती है, थैंक यू सो मच। को कहते हैं यानी तुमको भी उनमें शुमार होना है, यानी हेलो इधर देखो, यानी तुमको भी उनमें शुमार होना है, लोग जितने भी दिल से उतर गए मेरे। ओए होए होए, आई थिंक उन बैग में बैकग्राउंड म्यूजिक ला दें दी ना, नो नो नो नो नो नो, बहुत आला बहुत आला। यानी तुमको भी उनमें शुमार होना है, लोग जितने भी दिल से उतर गए मेरे, कमाल कर दिता तुसी, थैंक यू सो मच जी। कमल नाज कहती हैं जुबिया पिछले मंडे कहाँ थी आप, मैं यहाँ थी, हमारी लाइट नहीं थी। मेरे दुख ऐ, मेरे निके निके दुख, क्या बताऊं बहन आपको, आप मेरी दुखी स्टोरी सुनने बैठेंगी ना, यकीन माने वो टिश्यू पेपर रख के ज्यादा सारे बैठिएगा, रोने लग पड़ेंगी आप, रोना आ जाएगा आपको।
एनीवेज जी, यहाँ पे जो है ना वो न्यूज ब्रेक का टाइम हुआ जा रहा है, तो मेरे ख्याल से न्यूज ब्रेक की तरफ चलते हैं और फिर हम वापस आएंगे, और वापस आके फिर मैं ना आपको बताऊंगी कि मैं पिछले मंडे कहाँ थी। आपके बहुत सारे पैगाम आते हैं, उनको भी साथ में शामिल करूंगी। मुझे आपने ये बताना है कि आज एक तो 15 जून है बुजुर्गों के एहतराम का, उनसे प्यार करने का, उनके साथ अच्छे तरीके से पेश आने का आलमी दिन मनाया जाता है, यानी कि डिफरेंट सेमिनार्स जो है वो करवाए जा रहे हैं, सेशंस दिए जाते हैं और बताया जाता है, सिखाया जाता है हमारी यंग जनरेशन को, हमारे बच्चों को, कि आपने अपने बुज़ुर्गों के साथ अच्छे तरह से कैसे रहना है। इसके साथ साथ मुझे ये बताइएगा कि तरबियत में ऐसी कौन सी चीज़ शामिल की जाए जिससे आपको लगता है कि इसमें बेहतरी आ सकती है, किस चीज़ का फुकदान है, ये आपने बताना है। न्यूज़ ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं।

0: Coming up next, 101 News Headlines. News Headlines.
1: दिन के 12 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। आमिर हाशमी से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि अमरीका और ईरान के दरमियान तफसीली मुज़ाकरात के बाद अमन मुआहिदा तय पा गया है। आलमी रहनुमाओं ने अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहिदे तक पहुंचने में पाकिस्तान और दीगर ममालिक के किरदार को सराहा है। पाकिस्तान ने खसूसी इक्तिसादी ज़ोन्स की तरक्की के लिए एक नया अमल मुतरतीब दिया है। अफगान तालिबान के जाबराना कवानीन और हिरात में शहरियों के कत्लेआम के खिलाफ कैनेडा और यूरोप भर में एहतजाजी मुजाहरे किए गए।
2: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101
3: फॉर लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस आफ्टर एवरी वन आवर। ट्यून इन टू एफएम 101, द चैनल ऑफ रेडियो पाकिस्तान।

0: जी जनाब। अच्छा जी, हमारे सामने पैगामात हैं, उनको शामिल करते हैं। कौन है जी? हैप्पी बर्थडे अमृता चौधरी। अच्छा जी, अमृता चौधरी साहब आपकी भी बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे जी, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स। अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत खुश रखे, ढेरों खुशियाँ और ढेरों इस तरह के खूबसूरत दिन मुबारक करें। मैं अभी कुछ टाइम पहले कह रही थी ना कि ये जून के महीने में जो लोग आते हैं ना, कमाल ही होते हैं। वैसे ये बीजीएम सुन के ना मेरा डांस करने को दिल करता है ना। अच्छा जी, अमृता चौधरी साहब की मैसेज है, गुड मॉर्निंग कहती हैं। सज्जाद अली लाडला आ गए, ग्रेट आरजे आ गए, आओ वेलकम आपके जी। और खैरियत थी ना, आप लास्ट वीक नहीं आए ना, इतना मिस और वेट किया आपका, आप नहीं आए। ओहो क्या बताऊं लड़के, मैंने कहा ना मेरे बड़े दुख है, मेरी दुखी स्टोरी सुनोगे ना पूरी किताब लिख दोगे, और उसके आखिरी चैप्टर पे लिखोगे, आखिरी आखिरी आखिरी जो सफ़ा होता है ना उस पर क्या लिखा जाएगा, पनौती। ओ ओ नहीं यार, हूँ मना हूँ, आप तो ना कहें। कहते हैं तमाम सुनने वाली स्मातों को सलाम टू ऑल पाकिस्तान पंजाब एंड पाक आर्मी, बहुत सारा सलाम आपका सब तक पहुंच गया, बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद इजाज़ अली कहती है अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी, मैं ठीक हूँ। कमल नाज कहती हैं किसी से शिकवा ये या अपने नसीब की बात, अच्छा किसी से क्या शिकवा ये अपने नसीब की बात है, दिन में कहीं कहकशा कहीं अंधेरी रात है, हर बाजी जीतने में जीतते हैं दुनिया की अब तक हम ए दोस्त, हर बाजी जीते हैं दुनिया की अब तक हम ए दोस्त, मोहब्बत की बाजी में लगता है बस मात ही मात है, मोहब्बत की बाजी में होती मात है जनाब आलिया तनु, किन्ने क्या है कि दे विच कोई मात ही होती है। जितना आप किसी के साथ सिंसियरिटी के साथ चलेंगे, जितना आप किसी को अपना समझ के चलेंगे ना, जितना आप किसी के साथ अच्छे तरीके से चलेंगे, वो आपको उतना ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देगा। और फिर एक वक्त ऐसा आता है ना कि आप कह देंगे यार ठीक है ऐसे, तो फिर ऐसे ही सही, फिर आप खामोश हो जाते हैं, फिर सामने वाला कहता है यार आप बदल गए हो। बदल कैसे गए यार, इस बदलाव के पीछे ना देखिए कोई भी चीज़ है ना उसका एक स्पेसिफिक, आप किसी भी रिश्ते में दो तरफा रिश्ता चलता है, और ये जो लोग कहते हैं ना वन साइडेड रिलेशनशिप चल जाती है, मैं इस चीज़ को कतई तौर पे कभी भी नहीं मानी। प्यार मोहब्बत किसी चीज़ का भी रिश्ता है ना वो दोनों साइड से चलता है, जब तक दोनों तरफ से जो है ना वो उतनी ज़्यादा इनपुट नहीं किया जाएगा ना उसमें, प्यार खलूस मोहब्बत एहतराम सब कुछ कह लो आप, तब तक वो नहीं चल सकता। कोई एक साइड जो है वो अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश कर रही है, कहते तो हैं यार अपनी तरफ से तो करें, लेकिन नहीं, दोनों तरफ से जब तक कोशिश नहीं होगी ना तब तक वो रिश्ता नहीं चलेगा। चल सकता है एक महीना दो महीना तीन महीना हद दो साल, हम अक्सर शादियों में देखते हैं 20-20 साल के बाद शादियाँ जो हैं वो नाकाम हो जाती हैं, और हम कहते हैं यार इनने सारी ज़िंदगी तो गुजार ली इसने, अब छोड़ने की वजह क्या थी, अब तो कोई ऐसी बात भी नहीं हुई थी, अब तो उसके बच्चे जवान हो गए, अब तो ये मतलब जिंदगियां अपनी अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ गए, अब छोड़ने की क्या वजह थी। मसला ये होता है कि एक टाइम ऐसा होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको उस जो वो एक सर्कल होता है ना उससे निकलने नहीं दे रही होती, और आपकी इतनी ज़्यादा जो कोशिशें होती हैं ना, आप कह रहे होते हैं चलो ये कोशिश करके भी देख लें, एक वक्त होता है कि किसी रिश्ते को चलाने के लिए आप कहते हैं यार अच्छा ये ऐसे है ना चलो मैं ऐसे करके देख लेता हूँ, या मैं ऐसे करके देख लेती हूँ ऐसे शायद अच्छे तरीके से चल जाए। जब आप चारों तरफ की कोशिशें कर लेते हैं ना और वो रिश्ता वहीं का वहीं होता है, आपकी इतनी ज़्यादा चीज़ें करने के बावजूद अगला बंदा टस से मस नहीं हुआ, तो फिर एक वक्त ऐसा आता है कि आप वो कोशिशें करनी बंद कर देते हैं, आपके दिल से नहीं उठती, वो कहते हैं ना कि नज़रों से गिर जाता है इंसान। वो एक मैंने कहीं लाइन पढ़ी थी, वो लाइन मेरे ना नक्श हो गई दिमाग में, वो एक वो नावल था तो उसमें वो एक लाइन लिखती है, वो कहती है तुम ना पानी की तरह मेरे जहन से उतर गए हो, सुनने में बड़ी एक छोटी सी लाइन है, पानी की तरह उतर गए हो, उतर गए हो इट्स मीन खत्म हो गए हो, सफाया हो गया, पानी निकलता है निकल जाता है, वापसी का रास्ता नहीं होता, वो भी बड़ा एक खैर बात है जो है ना तो ऐसा होता है कि मोहब्बत जो होती है ना, वो खसारे का ही सौदा है। जो खसारा करना चाहता है वो फिर पड़ जाए इस पंगे में। एनीवेज कहती हैं, हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को बड़ों की इज्जत और एहतराम करने के साथ साथ हर एक का एहसास करना भी सिखाएं, क्योंकि इंसान के अंदर एहसास का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एहसास के बगैर इंसान ही है। बिल्कुल ऐसा है कि एहसास के बगैर जो है ना वो ज़िंदगी नहीं है। और एहसास करना इन दी सेंस, हम जो है ना वो बहुत ज़्यादा खुद को सोशलाइज करने के चक्कर में ना हमें एहसास की कहीं ना कहीं कमी होगी। हमें हर इंसान की कोई ना कोई बात जो होती है ना, वो कोई भी बात कर रहा होता है तो वो दिखावा लग रही होती है, वो झूठ लग रही होती है, चाहे वो सच हो। कुछ गलत लोगों के पीछे, कुछ ऐसे लोग जो दिखावा कर रहे होते हैं उनके चक्कर में हम उन लोगों को भी नहीं समझ पा रहे होते कि जो रियलिटी में वो किसी चीज़ को चाह रहे होते हैं या किसी चीज़ के हकदार होते हैं। किसी भी सिनेरियो में बात करें या कोई उनको तकलीफ़ होती है तो हमें लग रहा होता है कि ये मसला जो है ना ये बस दिखावा ही किया जा रहा है। तो इस वजह से ये इशू तो है, ये तो होना चाहिए। कमलनाथ, बहुत अच्छी बात आपने की। अच्छा जी, सजाद क्या कहते हैं? कहते हैं आपको इस सॉन्ग तोबा तोबा इश्क बचाए से एक शेर याद आया। मुझे लगता है कि मुझे ना कोई एक नाइट का प्रोग्राम जो होता है वो 8 से 10 वाला स्लॉट ले लेना चाहिए, जिसमें मैंने आपकी शायरियाँ पढ़नी है सारी। क्योंकि ये जो हमारे उन्होंने कहा ना, तो मॉर्निंग प्रोग्राम में शायरी शुरू कर दी है। अच्छा खैर, शायरी से तो मुझे भी रगबत है। कहते हैं ऐसे ना कर शिकायतें, दिल थाम इश्क है, वरना कहेंगे लोग कि नाकाम इश्क है। पहले कभी कभार किसी को हुआ था ये, इस दौरे बदलिहाज में अब आम इश्क है। सजाद, क्या वो इश्क है? क्या लगता है? मुझे तो लगता है अब कोई इश्क विश्क नहीं है, अब बहुत कम। वो सदी और थी जी, अब सदी और आ गई है, अब लोग और तरह के आ गए। एनीवेज, यहाँ पे एक गाने की तरफ बढ़ रही हूँ। मैंने कहा मेरी बातें सुन सुन के ना थक जाए आप, आगे की बोली जा रही है। आज से मज़र को शामिल कर रही हूँ, एंजॉय करें ना गर्मियों को भी, एंजॉय करें। और मैं कह रही थी हाँ, आम पन्ना की रेसिपी बताऊंगी मैं आपको, जाते हुए बता के जाऊंगी। मुझे याद कराना है आपने कि आपने मुझे बताना है। बड़ा मजे का बनता है यार, कैरियों का सीजन हो ना। किस दौड़ में, वैसे तो अभी भी कैरियां होती हैं।
1: नफरत मोहब्बत से बढ़कर क्यों सह रहे हैं हम, अंदाज गुफ्तगू ये
0: आज मुझसे
1: कागज की
0: फरमाइश नहीं करनी। आप फरमाइश कैसे करेंगे, मैं तो आपका फोन ही नहीं उठाऊंगा। MM101 के ऑफिशियल पेज पे जाइएगा, पोस्ट अपडेट हो चुकी है, उस पे कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके मैसेज शामिल हो जाइएगा और ये गाना सुनिएगा।

अच्छा जी, चल चल बुलिया ओथे चलिए। कभी कभी दिल करता है कि ये जो जैसे गर्मियां पड़ रही हैं ना, दिल करता है कि नारायण का गान। वो एक हमारी भाई का मैसेज आता होता था, आता है अभी भी, शायद अभी भी आया हो, वो नीलम वैली ठंडा पानी, वो उन इलाकों में जाने को दिल करता है। तो वैसे मुझे लगता है कि आपका ना एक घर होना चाहिए ये ठंडे इलाकों में। आप जो है ना वो ये 2-3 महीने गर्मियों की छुट्टियां एंजॉय करने, कुछ लोग जाते हैं ना गर्मियों की छुट्टियां एंजॉय करने, वहां पहुंच जाएं, है ना। अच्छा जी, आपके पैगामात को शामिल करती हूँ साथ में, ताकि आप, अच्छा आप आज, मैं आपको दोबारा बता दूँ कि जो कॉल करना चाह रहे हैं वो कॉल ना करें, क्योंकि कॉल्स थोड़ी सी हमारी आज इधर उधर हुई हैं, कॉल्स नहीं, कॉल पे बात नहीं हो पाएगी, इसलिए आप मुझे मैसेज करें। और मैसेज करने के लिए आपने क्या करना है, जाना है 4471 पे मैसेज करना है, मोबाइल की राइट ऑप्शन में जाना है, 101 स्पेस नाम पे कमेंट सेंड कर देना है, 4471 पे। मैं अभी आपके वो 4471 वाले मैसेजेस भी शामिल करती हूँ, देखती हूँ। और इसके साथ साथ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करने के लिए आप डायल करेंगे, डायल नहीं करेंगे, सर्च करेंगे फेसबुक, फेसबुक पे जाके आप क्या करेंगे, FM 101 लाहौर के पेज को सर्च आउट करेंगे, और उस पे जो पोस्ट अपडेट हुई है प्यारी सी लड़की की, उस पे कॉमेंट कर देंगे। इसके साथ साथ, अच्छा चलें आपको ये भी बता दी चलूँ कि FM 101 रेडियो पाकिस्तान आपके लिए लेकर आया है इंटर्नशिप का खसूसी एक मौका, जिसमें आप सीख सकेंगे बात करने का अंदाज़, अपने अल्फाज का चुनाव, और अपने पसंद के आर्टिस्ट के साथ आप मिल भी सकेंगे, बात भी कर सकेंगे। 2 महीने की ये जो है वो सेशन है, इसमें 1 मंथ जो है वो माइक ऑफ आपको क्लासेस दी जाएंगी, और 1 मंथ जो होगा वो ऑन द माइक होगा, यानी कि आप अपने पसंदीदा आरजेस के साथ बैठ के प्रोग्राम भी कर सकेंगे, माइक शेयर कर सकेंगे। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस सेशन में आपको, आपके पसंदीदा आरजेस से मिलने का मौका मिलेगा, उनसे वो चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा जो साल साल से उन्होंने अपने अंदर छुपा के रखी हुई थी, या जो क्वालिटीज़ की वजह से, जिन क्वालिटीज़ की वजह से वो यहाँ पे मौजूद हैं, वो सारी क्वालिटीज़ आप सीख सकेंगे इन 2 महीनों में। सो इस प्रोग्राम का हिस्सा लाजमी तौर पे बने। इसमें कुछ शराइत ये हैं कि आपकी एज जो है वो 18 से 28 साल के दरमियान में होनी चाहिए। मैंने उस दिन पूछा, मैंने कहा कि अगर 28 साल से ज़्यादा हो तो, बड़ी स्ट्रिक्टनेस से मुझे कह दिया गया नो, नेवर, 28 से ऊपर नहीं रखेंगे हम। FM 101 के ऑफिशियल पेज पे जो है वो इसकी अपलोड कर दी गई है, कि आपने उस पेज को अपलोड कर दिया गया है, आपने जाके ऑनलाइन अपनी सबमिशन करवानी है, फॉर्म सबमिट करवाना है और शामिल हो जाना है। इसको थोड़ा एक्सटेंड इसलिए कर दिया गया है कि मुहर्रमुल हराम के ये जो 10 दिन हैं ये गुजर जाएंगे, तो फिर 30 जून से इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा, इस सेशन का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। इसमें बहुत मौज मस्ती, फ़न, हल्ला गुल्ला भी होगा आपके लिए, डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो रखी जाएंगी, डिफरेंट गेम्स भी होंगी, डिफरेंट डिबेट्स भी होंगी, आपको माइक पे, आपको स्टेज पे बोलने का भी बताया जाएगा, मतलब बहुत सारी वो तमाम चीज़ें बताई जाएंगी जो आप सीखना चाहते हैं, अपनी बात को कैसे दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, ये तमाम बातें इसमें बताई जाएंगी। सज्जाद अली लाडला कहते हैं आप, अच्छा ये तो मैसेज में पढ़ चुकी, कहते हैं जी हम देखा धोखा देने वाले भी नहीं हैं, जी हम जिसके साथ भी चलते हैं लास्ट सांस। वाह सज्जाद, वाह क्या लड़के तुमने मैसेज किया है, इंग्लिश उर्दू पंजाबी को मिक्स करके ये जो तुमने मिक्सचर डाला है ना भाई, कहते हैं कि हम जिसके साथ भी चलते हैं लास्ट सांस तक चलते हैं, तो अगर आखिरी सांस यहाँ लिख देते तो क्या हो जाना था, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। ये जो मेरी आप करते रहती है ना, वो टेस्ट लेते हैं, ये मेरी वोकेबलरी का ही टेस्ट लेते रहते हैं। अच्छा जी, साथ चलते हैं बस मजबूरी, कोई नहीं आ जाए तब टाइम नहीं दे पाते तब को, अच्छा अच्छा आप कहते हैं कि हम कभी धोखा नहीं देते। कंवल नास कहती हैं हैप्पी बर्थडे रजा भाई, हैप्पी बर्थडे, अभी हम एक गाना भी लगाएंगे, हैप्पी हैप्पी बर्थडे ये वाला। सज्जाद अली लाडला कहती हैं हा हा आप भी तब जाते हो, आरजे जुबिया शफी ग्रेट आरजे ओ एम जी, मैं भी तब जाती हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें तपा देती हैं।
और मैं जब मेरे साथ ये मामला होता है कि जब मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है मैं बिल्कुल खामोश हो जाती हूँ, खामोश नहीं बात करती, मैं किसी से बात नहीं करती। मैं कहती हूँ कि यार अब जब गुस्सा ठंडा होगा ना या जब तब देखा जाएगा। सज्जाद अली लाला कहते हैं कि आपने कहा मैं कौन सी हाशिए ढक्स हूँ, मुझे हंसी आई। पता क्यों? वो मर्द हैं, आप लेडीज हैं, बस ये फर्क है। वाकई आप दोनों ग्रेट हैं, आप भी आ सकती हैं लाइव। आ तो सकती हूँ आज, वैसे मैंने आना है थोड़ी देर के लिए अपने पेज से ना, लाइव आऊँगी अभी, जाते जाते आऊँगी, लेकिन आऊँगी, कोशिश करूँगी, ट्राई करूँगी। कहते हैं कि मैं टॉपिक पे कहूँगा कि बिल्कुल तालीम के साथ साथ तरबियत लाजमी है। अगर हम अपने बच्चों को तरबियत नहीं देंगे तो उनका रहन सहन और उठना बैठने का पता कब चलेगा। और आपने कहा तरबियत में क्या सिखाया जाए, तरबियत में अच्छा, बड़ों का अदब, इज्जत करना और सब्र का दामन और बर्दाश्त करना और एहसास सब से बढ़ के अमल है। आपके अमल बिल्कुल, आपने कहना चाहा कि तरबियत में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है आप उसको, उनको एहसास, अदब और चीज़ों को बर्दाश्त करना। अच्छा, बर्दाश्त की ना मुझे वाकई लगता है कि बर्दाश्त की जो है ना वो कमी आ गई है। हम चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करते, हम रवैयों को बर्दाश्त करने में बहुत नाहल हो गए हैं। हम क्या करते हैं, हम अपनी बात तो सुना देते हैं लेकिन दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं होते। हम कहते हैं कि जो हमने कह दिया वो ठीक है, जो कोई दूसरा सोच रहा है या कहना चाह रहा है वो गलत है हमेशा। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, चीज़ें कुछ सामने वाले के नज़रिए से मुख्तलिफ होती हैं। उन चीज़ों को पहले समझना चाहिए और फिर उसके बाद कोई भी फैसला करना चाहिए, वरना फिर ए हल्ले ताड़ा। यस, स्टिक अराउंड।

मैं पाकिस्तानी कौम समेत पूरी आलमी बरादरी को इस कामयाबी पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। जनाब स्पीकर, मैं बिलखुसूस आपको इस मौजिज ऐवान के हर लायक एहतराम मेंबर को, चाहे वो इस तरफ तशरीफ फरमा है या इस तरफ तशरीफ फरमा है, मैं दिल की गहराइयों से आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं। और इसके साथ साथ पार्टी हेड्स, मैं इस हवाले से अपने लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। रहनुमाई हर वक्त मुझे मुयस्सर है। मैं सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और तमाम पार्टी हेड्स अलीम खान साहब और दूसरे जो जुम्मा हैं, चौधरी साहब, डॉक्टर मकबूल सदीकी साहब और दूसरे जनाब हमारे सरदार खालिद मक्सी साहब और बुरैन साहब और दर्जा बदर्जा एजाज उल हक साहब, इन सबको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं, जिनकी मुझे भरपूर मावनत हासिल रही। जनाब स्पीकर, ये सिर्फ दो ममालिक के दरमियान मुआहिदा नहीं जनाब स्पीकर, बल्कि अमन और मुकालमे की फतह है। ये डिप्लोमेसी की कामयाबी है और जंग की तबाही है। और जनाब स्पीकर, इस मौजिज ऐवान के हवाले से और आपकी भरपूर ताईद से मैं अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप, ईरान के सुप्रीम लीडर मोहतरम सैयद मुश्तबा खामनाई, ईरान के सदर और मेरे बड़े प्यारे भाई डॉक्टर मसूद पजश्कियान और अमन के इस अमल में शरीक दोनों टीम्स के तमाम मेंबरान को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं कि जिन्होंने नहायत मुश्किल हालात में तदब्बर, दानिश और सबर का हाथ ना छोड़ा और उसके नतीजे में आज ये अजीम दिन न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को नसीब हुआ। जनाब स्पीकर, यहां पर मैं मुज़ाकरात के इस नाजुक कठिन

को क्या था कि कोई हमसा है तो सामने आए। सज्जाद अली लाडला कहते हैं कि जी बिल्कुल, जो प्यार करेगा वो लोग और थे, जो प्यार कर गए वो लोग और थे, अब लोग हर और हैं, बस फर्क सोच, नियत और मुखलिसी का है और

अच्छा कहते हैं कि 10% अब जो है ना वो 10% जो है वो सच्चे लोग होते हैं. सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, ठीक कह रहे हो आप. जिमी राजपूत हैं, अस्सलाम वालेकुम कहते हैं. और कौन है हमारे साथ और हैं जी. सजाद हैं, कहते हैं आ गए आप, वेलकम जी आफ्टर लॉन्ग ब्रेक. बाद में तय क्या पता नहीं, असी बस ना समझी, असी बस ना ही समझी. नहीं अभी आप हाँ ही समझे, अभी 10 मिनट हैं और 10 मिनट में आप मुझे ढेर सारे मैसेजेस करें ना, मैं आपके मैसेजेस शामिल करूंगी. मुझे ये बताएं कि तरबियत में ऐसी कौन सी चीज़ शामिल होनी चाहिए जिससे जो है वो आपको लगता है कि जिस चीज़ का फुकदान है, जहाँ भी कमी आ रही है. अब अगर हम बात करते हैं ना, अच्छा थोड़ा सा मैं इस चीज़ को वो एलिब्रेट करने की कोशिश करती हूँ. अगर हम बात करते हैं ना कि यार अभी बच्चे नहीं सुनते, तो मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि बच्चा जब उसको पहली दफ़ा मोबाइल किसने दिया, उसको किसने मोबाइल दिया और कहा कि खाना खाओ, उसको किसने कहा कि अगर खाना खाओगे तो मोबाइल दूंगा या मोबाइल दूंगी, उसको किसने कहा कि ये काम कर लो फिर मोबाइल दूंगी. आपने अगर उसको ये कहा होता कि भाई मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी या मैं तुम्हें स्टोरी सुनाऊंगा या मैं मतलब इस तरह की चीज़ें. देखिए हमारे घर मतलब जब मोबाइल की एक्सेस नहीं थी या जब मोबाइल हमारे पास मौजूद नहीं थे, तो फिर हमारे पास तफरी की क्या चीज़ होती थी. हमें कहा जाता था कि आप ये काम कर लो और फिर आपको इतने बजे से इतने बजे तक आप टीवी देख सकते हो, 5 से 7 या 7 से 8 वो एक घंटा होता था वालबन, उसमें आप टेलीविज़न देख सकते थे. और जब मॉडर्न थोड़ा सा ज़माना आया, थोड़ा मॉडर्न दौर आया, तो उसमें अब क्या कहा जाता है कि तुम्हें टेलीफोन दे दिया जाएगा. अब जो काम उसने 12 घंटे में या 10 घंटे में या 8 घंटे में या 7 घंटों में कहो करना है, वो एक घंटे में करके और उसके बाद जो उसके पास 23 घंटे होते हैं, 23 में से चलो 12 घंटे आप सोने के निकाल लो, जो 11 घंटे होते हैं उस 11 घंटे में उसने मोबाइल तक अपनी रसाई रखनी है और कहना कि मैंने तो वो काम कर लिया था, आपको मुझे मोबाइल देना पड़ेगा. तो आप छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल फ़ोन पे अगर लगा देते हो या मोबाइल फ़ोन का उन्हें लालच दे देते हो, तो वो फिर जिस चीज़ का लालच बढ़ाते जाएं वो तो बढ़ता जाएगा. और मोबाइल फ़ोन कल मैं एक वो देख रही थी, वो ना एक वो कोई ऐप बता रहे थे, वो कोई सेटिंग में जाके एक ना वो सेटिंग का वो शायद कोई ग्रे पॉइंट कोई इस तरह करके नाम है उसका, तो वो कहते हैं कि उसको आप ऑन कर लो और उसके बाद फिर आप वो, मैं ना सर्च करके आपको उसका एक्यूरेट बताऊंगी. वो कहते हैं कि इसको आप ऑन कर लो और उसके बाद आप देखो कि आप मोबाइल फ़ोन कभी यूज़ ही नहीं करोगे, आपके जो मोबाइल फ़ोन की यूजेज है ना वो तकरीबन आपकी 90% कम हो जाएगी, क्योंकि आपका फ़ोन जो है ना वो ब्लैक एंड वाइट मोड पर चला जाएगा और फिर आप जो है ना आपको वो अट्रैक्ट नहीं कर रहा होगा. हम बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्शन में कर रहे होते हैं, वो जो कलरफुल बत्तियाँ होती हैं ना, वो जो ऐप के जो होते हैं कलर्स होते हैं, वो आपको अट्रैक्ट कर रहे होते हैं और बार बार उन चीज़ों की तरफ जा रहे होते हो. तो इसलिए तरबियत में मुझे लगता है कि जिस चीज़ का फुकदान है वो डेफिनेटली, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे हमारे लिसनर से यहाँ पे बात की कि आपको एहसास जो है ना वो सिखाना ज़रूरी है. जब तक हम एहसास नहीं सीख पाएंगे ना, खौफ नहीं सीख पाएंगे, एहसास नहीं सीख पाएंगे, तब तक तरबियत जो है ना वो मुकम्मल नहीं हो सकती. आप जितने मर्जी एजुकेटेड हो गए हैं, आप जितनी मर्जी ऊंची पोस्ट पे हैं, आप जितने मर्जी गुड लुकिंग है, लेकिन अगर आप में एहसास की कमी है ना, आप किसी का एहसास नहीं करते, आप किसी का ख्याल रखना नहीं जानते, तो यकीन जानिए कख नहीं है, जीरो. तो इसलिए अपने बच्चों को एहसास जो है ना वो ज़रूर सिखाएं, वो उन्हें ज़रूर बताएं कि आपने अपनी ज़िंदगी को गुजारने के साथ साथ दूसरों की ज़िंदगियों को आसान कैसे बनाना है. क्योंकि जब आप ये चीज़ सीख जाएंगे और ये चीज़ सिखा देंगे ना, तब चीज़ें जो है ना वो बहुत बेहतरी की तरफ आ जाएंगी और आप यकीनन एक अच्छे इंसान बन जाएंगे. एक गाना लगाते हैं फिर आके आपसे इजाजत लेंगे.

हो जनाब, जब आपको किसी की याद आनी है ना तो उसकी याद आनी है, कहीं भी आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ आपको याद आएगा। इसीलिए कहते हैं कि खुशी का ताल्लुक जो है ना वो दिल से हुआ करता है। अगर आपका दिल खुश नहीं है या आपका दिल जो है वो उस चीज को एंजॉय नहीं कर रहा ना, तो आप दुनिया के किसी भी कोने में सुकून तलाश करो, आपको सुकून नहीं मिलेगा। सजाद आला हमारे साथ, बिल्कुल मान रखना आता है लेकिन कुछ लोग मान तोड़ देते हैं। बिल्कुल ऐसे हैं लोग, तो फिर लोग हैं ना, लोग तो फिर इस तरह की चीजें करते रहते हैं। आपको जो है ना वो अपने तरीके से चलना है, आपको तो अच्छे तरीके से चलना है ताकि दूसरे आपके साथ वक्त के साथ समझ जाएंगे वो कि उन्होंने कैसी जिंदगी गुजारनी है। अपने बच्चों को गर्मियों की छुट्टियां जैसे आ गई है ना, उनका एक रूटीन सेट करें और इस रूटीन को इस तरह से सेट ना करें कि मोबाइल 24 घंटे उनके पास है। उनका पूरा एक स्केड्यूल बनाएं। आप पढ़े लिखे हैं, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, स्केड्यूल तो सेट कर सकते हैं ना। इसलिए और जो अपने रिश्ते हैं ना, अपने जाती इख्तलाफात हैं, उनका जो उनकी जो एक नेगेटिव साइड है ना वो अपने बच्चों के दिमागों में ना डालें। अगर आज आप उनके दिमागों में नेगेटिविटी डालेंगे ना, कल को आप जितना मर्जी पॉजिटिव हो जाएंगे वो आपको भी उसी सेंस में लेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है आपने। आपसे इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी बहुत जल्द। तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।

0: above FM 101.
1: मेरी फुकी की चपेट का निशान आज तेरे चेहरे का मिट गया पर उस चपेट की आवाज आज भी तेरे कनक कुंडी होगी।
2: FM 101 नाल नाल साडे ते नाल नाल तुवाडे क्यों जी कोई शक है क्या

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ।

moving. Hot Wired Radio. Today's best music. Q101. Electric.

moving. Hot Wired Radio. Today's best music. Q101. Electric.

0: शाम के 5 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। रिजवाना महताब से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान जुमे के रोज जेनेवा में अमरीका और ईरान के दरमियान तारीखी अमन मुआहदे की तकरीब की मेजबानी करेगा। बरतानिया ने अमरीका ईरान मुआहदा कराने में पाकिस्तान के तामीरी सिफारती किरदार को सराहा है। वजीर खजाना ने कहा है कि अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहदे से पाकिस्तान की मईशत और वसी तर इलाकाई इस्तेहकाम के लिए हौसला अफजा असरात मुरतब होंगे। और आज गजा में इसराइली हमले में मजीद 6 फलस्तीनी शहीद हो गए।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.1।
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
3: सूरज की किरणें हर सुबह लाती हैं एक नया उम्मीद सफर, पर बिजली के बिल और लोड शेडिंग का अंधेरा करता है सबको फिक्रमंद। अब अंधेरों को कहो अलविदा और रोशनी को अपनाओ। AE Power से अपने घर में रोशनी ले आओ। AE Power, the ultimate power solution.
4: हमसे है रोशन ये जहां,
5: हमसे है

0: तुम स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
2: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: This is FM 101.1.
4: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
5: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: back after this short commercial break. Stay with us.
1: निकाह खुशियों भरे एक खूबसूरत सफर का आगाज है। इसका बरवक्त इंदराज एक कानूनी तकाजा है जो इस सफर को महफूज बनाता है। निकाह के बाद एक अहम काम अक्सर नजरअंदाज हो जाता है जो आगे चलकर परेशानी का बाइस भी बन सकता है, लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील यकीनी बनाएं। नादरा रिकॉर्ड में अजदवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में शादी का इंदराज कानून की नज़र में आपकी अजदवाजी हैसियत का एतराफ है जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड और दीगर सरकारी अमूर में मददगार साबित होता है। यूनियन काउंसिल में निकाह का इंदराज होने के बाद करीबी नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अजदवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
2: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: be back after this short commercial break. Stay with us.
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: दिस इज FM 101.1।
3: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.1।
4: फॉर लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस आफ्टर एवरी वन आवर ट्यून इन टू FM 101, द चैनल ऑफ रेडियो पाकिस्तान। रेडियो पाकिस्तान।
5: साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
6: सूरज की किरणें हर सुबह लाती हैं एक नया उम्मीदें सफर, पर बिजली के बिल और लोड शेडिंग का अंधेरा करता है सबको फिक्रमंद। अब अंधेरों को कहो अलविदा और रोशनी को अपनाओ। AE पावर से अपने घर में रोशनी ले आओ। AE पावर, द अल्टीमेट पावर सॉल्यूशन।
7: हमसे है रोशन ये जहां,
8: हमसे है

0: AE Power, the ultimate power solution.
1: सुनते रहिए FM 101.
2: शादीशुदा जोड़ों के दरमियान अलहदगी या तलाक जिंदगी की तल्ख हकीकतों में से एक है। ऐसे मौके पर एक अहम कानूनी जिम्मेदारी अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, जो आगे चलकर गैर जरूरी पेचीदगियों का सबब बन सकती है। लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं। तलाक या खुला के बाद नादरा रिकॉर्ड में अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत का दुरुस्त रिकॉर्ड आपकी कानूनी हैसियत का बकायदा एतराफ है, जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, बच्चों के बेफॉर्म शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड की दुरुस्ती और दीगर सरकारी अमूर में आपके लिए आसानी पैदा करता है। तलाक या खुला की कार्रवाई और यूनियन काउंसिल में इंदराज मुकम्मल होने के बाद करीबी नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त आपकी पहचान।
1: सुनते रहिए FM 101.

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: सुनते रहिए FM 101।
1: निकाह खुशियों भरे एक खूबसूरत सफर का आगाज है। इसका बरवक्त इंदराज एक कानूनी तकाजा है जो इस सफर को महफूज बनाता है। निकाह के बाद एक अहम काम अक्सर नजरअंदाज हो जाता है जो आगे चलकर परेशानी का बाइस भी बन सकता है, लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील यकीनी बनाएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में शादी का इंदराज कानून की नज़र में आपकी अज़दवाजी हैसियत का एतराफ है जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड और दीगर सरकारी अमूर में मददगार साबित होता है। यूनियन काउंसिल में निकाह का इंदराज होने के बाद करीबी नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

Anyways, ये प्रोग्राम स्टार्ट किया, आपको बता दें किस तरह प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हो। लाइव कॉल्स के लिए हमारा नंबर है 0519202540। दूसरा नंबर नहीं बोल रहा क्योंकि उस पर कॉल्स नहीं आती, तो इसलिए मैं एक ही नंबर बोल रहा हूँ 0519202540। इसके अलावा जी आप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हो एसएमएस मैसेज के थ्रू। अभी सब अपने मोबाइल फोन की एसएमएस की ऑप्शन में जाओ, वहां पर लिखो 101 एक स्पेस मैसेज नाम शेयर के नाम और अपने तमाम एसएमएस मैसेज आप हमें सेंड कर दो 4471 पर। इसके अलावा जी फेसबुक पे हमारा ऑफिशियल फैन पे ज्वाइन करो www.facebook.com/fm101channelpakistan, जहां पर आपको अभी के शो वाली पोस्ट अगर तो नजर नहीं आ रही तो कुछ ही देर में आपको पोस्ट जो है वो अपडेट हो जाएगी, नजर आ जाएगी कि आपका मेरा साथ रहेगा 12 से लेकर 2 बजे तक एफएम 101 इंटरनेशनल में। वहां पर अपने कमेंट्स और फीडबैक जरूर दीजिएगा, खासतौर पर हमारे वो दोस्त जो कि पाकिस्तान से बाहर इंटरनेशनली हमारा प्रोग्राम सुनते हैं, आप फेसबुक के थ्रू इजिली प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकोगे। एनीवेज आई होप सो कि लास्ट वीक जो है मेरे साथ शो में हमारे गेस्ट थे दोदी खान, उनके साथ जो हमारी गपशप लगी, उनसे बहुत सारे सवाल किए और उनको जानने की कोशिश की और उनकी मूवी जो है ज़ोंबी के ऊपर हमने उनके साथ बहुत सारी बातें की। आई होप सो कि आपको लास्ट वीक का शो जो है वो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आप उसको देखना चाहें लाइव देखना चाहें उस पूरे शो के, तो आप हमारे फेसबुक के ऑफिशियल फैन पेज जो है एफ एम 101 का, उधर जाकर आप उस शो को लाइव देख भी सकते हैं, वहाँ पर वीडियो जो है मौजूद है।

एनीवेज जी, प्रोग्राम में क्या होगा, प्रोग्राम में एक सवाल अभी कुछ ही देर में आपसे पूछूंगा, बहुत सारी बातें होंगी और साथ बहुत सारा म्यूजिक होगा। और अभी मैं शो को स्टार्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट ट्रैक में प्ले कर रहा हूँ आतिफ असलम की आवाज़ में। आज थोड़ा पुराना ट्रैक जो आतिफ असलम का मैं शामिल कर रहा हूँ प्रोग्राम में। और अभी कल कॉन्सर्ट भी हुआ है लंदन में आतिफ असलम का, इतना क्राउड लोगों ने इतना एंजॉय किया, जैम पैक था। तो आतिफ असलम का फर्स्ट ट्रैक जो हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं, जो उन्होंने फर्स्ट गाया था, जी हाँ, वो लम्हे, कितनी मेमोरीज है ना इस ट्रैक के साथ जो है, कितनी यादें जो हैं वो एकदम से माइंड में आ जाती हैं। एंजॉय कीजिएगा, अगर आपका दिल करा चाय पीने को, कॉफी पीने को, ग्रीन टी पीने को, तो जल्दी से जाइए बना के लाइए और हमारा साथ दीजिए शो में रात के ठीक 2 बजे तक। मेरा नाम हसैन रजा है और आप सुन रहे हैं FM 101 इंटरनेशनल साबा स्टूडियो से।

वेलकम बैक एट एफएम 101 इंटरनेशनल में आदिल मुस्लिम की आवाज में आप ट्रैक सुन रहे थे। एनीवेज सबसे पहले मैं आपको बता दूं आज के प्रोग्राम में आपसे सवाल क्या पूछे जा रहे हूं। आपने मुझे बताना है कोई एक चीज, कोई एक बात जिसके बारे में आपने केयर करनी छोड़ दी है, ठीक है, और आपकी जिंदगी जो है बहुत बहुत सुकून वाली हो गई है, ठीक है। कोई एक बात बताओ जिसके बारे में आपने केयर करना छोड़ दिया, सोचना छोड़ दिया है और आपकी जिंदगी जो है वो बहुत सुकून वाली हो गई है। अब ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती है, मैं देखूंगा कि आप ऐसा क्या मुझे बताते हो, किस चीज के बारे में बताते हो जिसके बारे में आपने सोचना छोड़ दिया, केयर करना छोड़ दिया है और आपकी जिंदगी बहुत बेहतर हो गई है, सुकून वाली हो गई है। तो आप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करोगे 101 एक्सप्रेस मैसेज नाम शेयर के नाम लिखकर 4471 पर। इसके अलावा फेसबुक पे आप पार्टिसिपेट करोगे www.facebook.com/fm101 चैनल पाकिस्तान। अभी पोस्ट जो है वो फेसबुक पर लग चुकी है, वहां पर जाकर अपना फीडबैक आप दे सकते हो।

एनीवेज जी, फीफा वर्ल्ड कप जो है वो स्टार्ट हो चुका है और अभी जो है मैच जारी है। बेल्जियम इजिप्ट का 0-0 स्कोर है। और वैसे आप ये भी मुझे बता सकते हो प्रोग्राम में किस टीम को आप सपोर्ट कर रहे हो। वैसे मैं सोच रहा था कि मेरी तो एक ही टीम है हमेशा से, अर्जेंटीना को मैं सपोर्ट करता हूँ, लेकिन यह कि और भी तो टीम्स बहुत इस बार बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब अर्जेंटीना होगी, ब्राज़ील भी लोगों की फेवरेट है, पुर्तगाल भी लोगों की फेवरेट है, यूरोगाय की टीम भी अच्छी है, स्पेन की टीम भी अच्छी है, तो बहुत सारी टीम जो है वो मतलब के बड़ी कंपेटिटिव है। सो देखना यह कि इस बार फीफा का वर्ल्ड कप जो है वो कौन सी टीम जीतेगी।

शुक्रिया जी. जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जो मैंने सवाल पूछा प्रोग्राम में, उसके अलावा जो है आप कोई भी बात प्रोग्राम में करना चाहो जो आपके साथ लाइफ में इस टाइम हो रही है, कोई मतलब बहुत कुछ अच्छा लाइफ में हो रहा है, कुछ बात समझ नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम चल रही है, एक्साइटेड हो, सरप्राइज मिला है, कुछ कन्फ्यूज हो, सोचो पे गुम हो, आजकल कोई फैसला नहीं लिया चाह रहा, कुछ भी आप लिख के भेज सकते हो. आप हमें 101 एक्सप्रेस मैसेज नाम शाह के नाम लिखकर 4471 पर, फेसबुक पे www.facebook.com/fm101 पाकिस्तान पर हम उसको ऊपर बात कर सकते हैं और आपको कोई ना कोई अपनी राय दे सकते हैं उसके ऊपर. और इसके अलावा मैंने आपसे पूछा, मुझे बताओ कोई एक बात जिसके बारे में आपने सोचना या केयर करना छोड़ दिया और आपकी ज़िंदगी अब बहुत सुकून वाली हो गई है.

बस अभी कल जो है न्यूज चलती रही है कि ईरान और अमेरिका के बीच में मामलात जो हैं वो ऑलमोस्ट तय पा गए हैं, और जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब की बहुत एफर्ट्स हैं, और उसके अलावा हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो हैं, इन दोनों की बहुत ज़्यादा एफर्ट्स हैं, और हम दुआगो हैं कि ये जल्द जो है मामलात जो हैं वो तय पा जाएँ, एग्रीमेंट हो जाए, और उसके बाद जो है वो मतलब कि जहाँ जहाँ महंगाई हुई है वो महंगाई वापस आए, और लाइफ में सारे जो है वापस आए, क्योंकि आई नो जब पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है, जिसकी वजह से सिर्फ पाकिस्तान नहीं बाकी बहुत सारे और ममालिक हैं जो कि अफेक्ट हो रहे हैं, और जहाँ पर पेट्रोल की वजह से चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों के अंदर जो है वो चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। हमारी बहुत सारी बेस्ट विशेज हैं जी।

एनीवेज ये भी नेक्स्ट ट्रैक प्रोग्राम में प्ले करते हैं. नेक्स्ट ट्रैक आपके लिए मैंने क्यू किया है, कौन सा बिलाल सईद को प्ले करते हैं प्रोग्राम में, ट्रैक मिस अंडरस्टूड. सर ट्रैक को एंजॉय कीजिएगा जो दोस्त हम ड्राइव करें स्पेशली मोरव हाईवेज पे और साथ सुन रहे हैं मोरव इंटरनेशनल को. आपसे हमेशा की तरह एक ही बात करना चाहेंगे, प्लीज ड्राइव केयरफुली एंड सेफली एंड कीप लिसनिंग.

ऑरिजिनल सोसाब वेलकम बैक टू एफएम 101 इंटरनेशनल में आप ट्रैक सुन रहे थे बिलाल सईद की आवाज में। एनीवेज ये आपसे मैंने पूछा कि मैं बताओ कि कोई एक बात जिसके बारे में आपने सोशल केयर करना छोड़ दिया और आपकी जिंदगी जो बड़ी सुकून वाली हो गई है। आप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें 101 एक्सप्रेस मैसेज नाम शेयर के नाम लिखकर 4471 पर और साथ फेसबुक पे आप अपने मैसेज सेंड कर रहे हो www.facebook.com/fm101 चैनल पाकिस्तान पर और आपके मैसेज का मैं इंतजार कर रहा हूँ और कुछ ही देर में आपके मैसेज जो है हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। एनीवेज ये भी कुछ देर पहले तक इजिप्ट ने पहला गोल कर दिया है बेल्जियम के खिलाफ जो है और अभी 27 मिनट का मैच जो है वो जारी है। काफ़ी मैच पड़ा हुआ है अभी, देखते हैं क्या होता है। ऑब्वियसली बेल्जियम फुल फाइट बैक करेगा और इतनी आसानी से मैच जाने तो नहीं देगा। अच्छा अभी कल परसों जो है मैं एक वीडियो देख रहा था सोशल मीडिया पे, काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट कर रही है। एक खातून है जिनको बंगी जंप के लिए उनको ऊपर से नीचे फेंका गया और जब फेंका गया तो पता चला कि उनके साथ जो है वो सेफ्टी रोप जो है वो थी नहीं और उनकी जो है वो डेथ होगी। मैं ये बात सोच रहा था कि यार मतलब कि इतनी ऊपर से आप जो अगर जंप कर रहे हो तो आप कैसे ये बात भूल सकते हो कि सेफ्टी रोप जो है रस्सी जो है वो साथ आपने जो है वो नहीं बांधी हुई है। और अब लोग तो अपने अपने व्यूज़ देख रहे हैं, पता है आपको सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया पे हर कोई जो है वो अपने कमेंट्स जो है वो अपने तरीके से वीडियोज़ बना के जो है वो शेयर कर रहा होता है। ये उसी तरह था कि आप किसी को कहो कि यार 200 की स्पीड से गाड़ी चलानी है और जब 200 की स्पीड पहुंच जाए उसे पता चले कि यार गाड़ी की तो ब्रेक्स ही नहीं है। सो आजकल जहां पर सोशल मीडिया का दौर है वहां पर हमें इतने कुछ देखने को मिलता है, हमें इतना कुछ देखने को मिलता है कि जो मतलब पहले ऐसा नहीं था। अब क्योंकि हर चीज़ की वीडियो बन रही होती है, हर कोई रिकॉर्डिंग कर रहा होता है तो बहुत सारी ऐसी वीडियोस आपको देखने को मिलती हैं जिसके बाद आप सोचते हो कि यार ये लोग जो है वो क्या क्या करते हैं। आप इसी तरह जो है मैं एक वीडियो देख रहा था एक स्पाइडरमैन, ठीक है, जिन्हें रियल स्पाइडरमैन कहा जाता है, वो पहाड़ों के ऊपर जो है वो चलते थे क्लाइंब करते थे। तो अभी उनकी वीडियो भी अभी कल मैं देख रहा था, उनके साथ ये एक्सीडेंट हुए, उनकी डेथ हुई है कि वो मतलब वो बहुत बड़े बड़े पत्थर वाले पहाड़ थे उसके ऊपर चढ़े हुए थे लेकिन उनका हाथ जो है वो स्लिप कर गया। हालांकि उनको बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट कहा जाता था और उनका हाथ जो है स्लिप किया है और वो गिरे हैं और उनकी जो है डेथ हो गई।

खैर जी, आप मुझे बता रहे कोई ऐसी बात जिसके बारे में आपने सोचना या केयर करना छोड़ दिया है और लाइफ जो है आपकी काफी सुकून वाली हो गई है।

0: अच्छा जी, हमारे साथ पार्टिसिपेट किया है रोजी शेख ने, आपने कहा कि ओवर थिंकिंग करना कम कर दिया है, इस वजह से जिंदगी में कुछ सुकून आ गया है। और आपने कहा कि लास्ट वीक जो है आपने शो सुना था और लाइव देखा भी था, और आपको उनकी बातें जो है बहुत अच्छी लगी। चले थैंक यू वेरी मच। और ओवर थिंकिंग करना वैसे कैसे छोड़ा है, आपने कुछ बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें इससे सुन भी रहे होंगे, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं भी जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और सोचने की वजह से वो ज़्यादा, जो लोग ज़्यादा सोचते हैं वो काम को कर नहीं सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग कम सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, लेकिन जो करना होता है वो कर लेते हैं, और लेकिन सोचने में बड़ी कैटेगरीज आ जाती हैं। आप मतलब ये भी सोच रहे हो तो अगर किसी ने कोई बात कह दी आपको, तो आपके दिमाग में घूमती रहती है कि यार इसने ये बात मुझे क्यों कही है, नेगेटिव बात। और अगर कोई मतलब खुशी में कोई बात कह दे, वो भी आपके दिमाग में घूमती रहती है। आप सोचते रहते हो कि यार उस, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, उसने मेरे बारे में ऐसा अच्छी बात कह दी है। और कभी किसी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में टीचर अगर कोई बात कहते हैं, पेरेंट्स अगर कोई बात कह देते हैं, या दोस्त कोई बात ऐसे टॉन कर देते हैं, या खुशी में कुछ बात कह देते हैं, तो आप उसको सोचते रहते हो, या दिल कोई आपको दुखा देता है, या कोई काम आपसे ठीक नहीं होता है, या कोई इंटरव्यू के लिए आप जा रहे होते हो, या ड्राइविंग कर रहे होते हो, कोई गाना सुन रहे होते हो, तो इंसान की फितरत है कि वो सोचना शुरू कर देता है। लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं सोचना चाहिए।
1: तू मुड़ के ते फेर तक कि ना अंदरों में टूटे आते दुनिया दे सामने में शेर तक कि ना डरे।
0: चलें जी, अच्छी बात है, आपने इस आदत को अपना छोड़ दिया है। सदीक डार हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर से, थैंक यू सो मच आपका। और इसके अलावा दार हमारे साथ रावलपिंडी से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मैंने ज़्यादा खाना खाने के खाना खाने के बारे में सोचना जो है वो काफ़ी कम कर दिया है, तो उससे मेरा वेट भी कम हो गया और ज़िंदगी में सुकून भी हो गया। चलो ये तो अच्छा किया अदनान आपने। और इतना ना खाया करो ना कि बस खाते ही रहो, इतना ख्याल करो जितनी आपको जरूरत है, जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है।

जी अभी प्रोग्राम में एक ट्रैक प्ले करते हैं. नेक्स्ट ट्रैक आपके लिए मैंने क्यों किया हुआ है. ये ट्रैक काफी टाइम से मैं प्रोग्राम में शामिल कर रहा हूँ फ्रॉम द ड्रामा. और ट्रैक है कभी मैं कभी तुम. ट्रैक चल दिए तुम कहाँ. सो ट्रैक को एंजॉय कीजिएगा. मेरा नाम हसन रोज़ है. आपको मेरा साथ है ठीक रात के 2 बजे तक. जाना अपने कहीं नहीं क्योंकि हम वापस आएंगे इस ट्रैक के बाद.

जलिस साहब वेलकम बैक एंड एफएम 101 इंटरनेशनल में। एनीवेज ये आपसे मैंने पूछा, मुझे बताओ कि क्या ऐसी बात है जिसके बारे में सोच केयर करना छोड़ दिया और आपकी जिंदगी जो है काफी सुकून वाली हो गई है। सो 101 एक्सप्रेस मैसेज नाम शेयर के नाम लेकर 4471 पे आपके मैसेज मेरे पास आ रहे हैं। इसके अलावा www.facebook.com/fm101shellpakistan और प्लीज जो हमारे लिसनर्स जो हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं सॉन्ग्स की, प्लीज ना कीजिएगा, मेरे प्रोग्राम में रिक्वेस्ट जो है वो पूरी नहीं होती हैं। और अभी कुछ देर पहले मुझे पता चला है कि बाहर जो है मौसम जो है वो काफ़ी बारिश वाला हो गया है और बारिश अभी कुछ ही देर में काफ़ी ज़्यादा गरज चमक के साथ हो सकती है। सो इट मीन्स कि फिर देख लो मंडे है और मेरा शो है और बारिश, तो अब मैं क्या कह सकता हूँ इस बारे में। एनी वैसी महाजबीन हमारे साथ पार्टिसिपेट करी है, आपने कहा कि मैंने बहुत ज़्यादा गुस्सा करना छोड़ दिया है, अब मैं देखती हूँ कि कहाँ मेरी गलती है और कहाँ दूसरे की, और फिर अगर अपनी गलती हो तो फ़ौरन माफ़ी मांग लेती हूँ और दूसरों की हो तो माफ़ कर देती हूँ, और ऐसे करने से लाइफ बहुत अच्छी हो गई है। चलो ये तो अच्छी बात है, अगर जो इंसान गलती मान ले तो इट मीन्स कि वो चीज़ों को ख़त्म करना चाहता है, ठीक है, और वो अपने आप को बहुत बड़ा नहीं समझता, बड़ा इन द सेंस कि वो जिसको अपना समझता है तो उसके सामने अपने आप को बहुत बड़ा नहीं समझता या कुछ इस तरह की बातें जहन में नहीं रखता। लेकिन जो लोग गलती नहीं मानते ना वो फिर कहते हैं कि यार मैं क्यों गलती मानूँ, वो हर चीज़ को अना का मसला बना लेते हैं और वो फिर दूसरों को माफ़ भी नहीं करते हैं। सो और दिल में बातें भी रखते हैं, तो अगर जहाँ पर आपको लगे कि यार आपकी गलती है कि यार सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए चीज़ों को ड्रैग नहीं करना चाहिए, वो अलग बात है। हालांकि कोई अगर बहुत ही सीरियस बात हो जाती है, अगर बहुत ही जहाँ पर आपको लगे कि आपकी कोई मिस्टेक नहीं है लेकिन बहुत ही बड़ी बड़ी बातों की बात करो, वहाँ पर फिर थोड़ा सोच लेना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, उसको भी सॉर्ट आउट करना चाहिए। लेकिन समटाइम्स जो है ना चीज़ें सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ जाती हैं, जब सेल्फ रिस्पेक्ट पे आती हैं तो उस टाइम फिर इंसान सोचता है कि यार यहाँ तो मैं ठीक भी हूँ, यहाँ पर बात भी ठीक कर रहा हूँ और स्टांस भी मेरा ठीक है और गलती भी मेरी नहीं है, फिर भी आगे से जो है वो रिएक्शन बड़ा बुरा है और गलती करके भी अगला बंदा बोली जा रहा है और फिर आपकी इंसल्ट भी होती जा रही है। सो फिर वहाँ पर फिर थोड़ा आपको सोचना पड़ता है कि यार क्या करना चाहिए, और वहाँ पर सबसे बेहतर यही होता है ऐसी सिचुएशंस में कि आप उधर से उठ के चले जाओ, वो सबसे बेस्ट होता है, वहाँ पर आप बैठे हुए ना ऐसी जगह पर।

एनी वेज जी, इसके अलावा जी हमारे साथ अब्दुल कादिर हैं, आपने पार्टिसिपेट किया है रावलपिंडी से। आपने कहा है कि अच्छा, आपने जो है वो सेविंग्स के बारे में सोचा छोड़ दी है, लाइफ बड़ी सुकून वाली हो गई है। अच्छा, क्यों सेविंग्स के बारे में क्यों आपने सोचा छोड़ दिया यार, सेविंग तो करनी चाहिए। आप इसकी रीज़न क्या है वो आप बताएंगे कि आप क्यों ऐसा कह रहे हैं कि सेविंग के बारे में सोचने से आपकी लाइफ जो है वो कैसे जो है वो सुकून वाली हो सकती है। हाँ, आप ये मैं

तरफ से कह रहा हूँ, हो सकता है कि आप तो सोचोगे यार सेविंग तो हो नहीं रही, तो ज्यादा इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। महंगाई हो गई ना, शो के स्टार्ट में मैंने बात की थी, तो अब टाइम बड़ा डिफरेंट हो गया है। अच्छा जहाँ पर आप सेविंग्स की बात कर रहे हो, अब सेविंग्स की ना कुछ लोग होते हैं वो बड़ी फोर्सफुल सेविंग करते हैं, मतलब वो कहते हैं कि नहीं यार अगर मैं फॉर एग्जांपल 50,000 रुपये कमा रहा हूँ ना, उसमें से मैंने 15,000 तो सेव करने ही कर रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, वो उन 15,000 को ना साइड पर रख देते हैं और बाकी के पैसे जो है ना वो अपने एक्सपेंस वगैरह, बाकी पूरा महीना कैसे गुजारना है, ये जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं यार 50,000 कमाए यार कोई बात नहीं लगा दो सारे जो हैं, और कुछ लोग जो हैं वो जो 50,000 भी नहीं कमाते वो यही सोचते रहते हैं कि 50,000 कमाने कैसे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि सेविंग्स करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए, क्योंकि एक टाइम आता है कि आप सोचते हो कि यार मैं कहीं पे इन्वेस्ट ही कर लेता, मैं कोई ऐसी चीज खरीद लेता जिससे मुझे फायदा ही हो जाता, ना कि मैं सारे पैसे जो हैं वो इसे खर्च ही करता जा रहा हूँ। अब बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो पूरा साल जो है ना वो इसलिए सेविंग करते हैं कि यार पाकिस्तान से बाहर कोई टूर लगा सके, ठीक है, या पाकिस्तान में जब गर्मियां हों तो नॉर्दर्न एरियाज का एक ट्रिप लगा सकें, सो अपनी लाइफ को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए, फ्रेश करने के लिए वो ये सब करते हैं, और करना भी चाहिए इंसान को। लाइफ देखो, लाइफ बड़ी सीरियस है, लाइफ बड़ी बिजी है हर एक की, और अगर आप उसमें वक्त नहीं निकालेंगे ना तो आपकी लाइफ जो है ना एक जगह रुक जाएगी, और जब रुक जाएगी तो फिर आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। आपको मैंने देखे हैं कुछ अपने मेरे कोलीग्स हैं, मैं एक जगह जॉब करता था एक इदारे में, सो मैं आज भी देखता हूँ कि वहाँ पर जो मेरे सीनियर्स थे या मेरे साथ वाले थे वो आज भी अपनी लाइफ जो है वो वैसे ही गुजार रहे हैं, मतलब कि ना मैंने कभी उन्हें शहर से बाहर जाते देखा है, ना मैंने उन्हें कभी लाइफ में कोई चेंज आते देखा है, ग्रोथ बड़ी कम है, फिर वो कहते हैं यार ठीक है यार जो चल रहा है वो चल रहा है, हम खुश हैं इसमें। सो यह प्रायोरिटीज भी होती हैं कि आप लाइफ में चाहते क्या हो, और ऑब्वियसली देखो जो लाइफ में कुछ अचीव करना चाहता है, आगे निकलना चाहता है, वो फिर आउट ऑफ द वे जाके कुछ करता है, और उसके लिए फिर आपको रिस्क लेने पड़ते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है।

0: एनीवे जी प्रोग्राम में आप लाइव कॉल से भी पार्टिसिपेट कर सकते हो. नंबर दोनों में बताता हूँ, 0511111111 एंड दूसरा नंबर है 0519202540. लास्ट वीक मुझे बड़ा बुरा लगा, गेस्ट आए हुए थे वो कॉल्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया, और आपको पता है कि एक से दो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है कॉल्स में, और फिर मैंने उसी वजह से दो कॉल्स ड्रॉप हुई हैं. मैंने फिर प्रोग्राम में कॉल्स नहीं ली, हालांकि मुझे पिछले प्रोग्राम में कॉल्स चाहिए थी, और जो हमारे गेस्ट हैं वो भी चाह रहे थे प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स हों, लेकिन वो नहीं हो सकें इसी वजह से भी कॉल्स जो हैं वो नहीं सही कनेक्ट हो सकें. सो अभी देखते हैं, कोशिश करते हैं आपकी कॉल्स को हम प्रोग्राम में शामिल करें. रिपीट करता हूँ, 0511111111 एंड 0519202540 पर. और प्लीज़ जो भी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें उन्हें पता होना चाहिए प्रोग्राम में क्या हो रहा है, और अगर आपने नहीं सुना तो प्लीज़ आप सुन के प्रोग्राम में शामिल हो जाइएगा. एनीवेज जी कॉलर देखते हैं हमारे साथ कौन है. अस्सलाम वालेकुम. देखे ना कॉल जो है वो गायब हो गई, अब लाइंस ब्लिंक करती हैं लेकिन कॉल नहीं आती है, इसी वजह से फिर मैंने लास्ट प्रोग्राम में कॉल्स नहीं ली. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम जी, रिमशा मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताएं खैरियत से हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आपकी दुआ से.
0: मुझे बताएं लाहौर में बारिश हो रही है?
1: नहीं अभी तो नहीं, वैसे हफ्ते को जुम्मे को हुई थी, मौसम बहुत प्यारा था, अभी जो है थोड़ा सा गर्म है.
0: अच्छा गर्मी है, ठीक है. नहीं यहाँ पर तो कल बारिश हुई है और मंडे था तो होनी थी, तो ये कि मौसम अभी भी सुनने में आ रहा है अच्छा है, तो हम तो मजे में.
1: हफ्ते को और जुम्मे को मौसम बहुत अच्छा बना हुआ था, यहाँ पे अंधेरी तूफान आया था, बारिश भी हुई थी, और अभी जो है मौसम फिर से वैसा हो गया है, इतनी गर्मी नहीं थी आज, ऐसे नॉर्मल मौसम था.
0: अच्छा नहीं जो बाहर निकलते हैं उनसे पूछे कितनी गर्मी थी दोपहर को 12-1-2
1: बजे. मैं बाजार गई हूँ हफ्ते को, इतना प्यारा मौसम था, हवा चल रही थी, आज भी मैंने जाना था, मैं मौसम को देख के घर में टिक गई.
0: फिर मेरे ख्याल से लाहौर में अब गर्मी पड़ना खत्म हो गई है, फिर इस्लामाबाद में ज्यादा गर्मी पड़ती है.
1: ऐसे ही है, आप कहते थे ना लाहौर में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, अब लाहौर में ज्यादा नहीं होती, इस्लामाबाद में होती है.
0: ऐसे ही है, मुझे भी ऐसे कुछ लग रहा है. अच्छा मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी बात है जिसके बारे में आपने केयर करना सोचना छोड़ दिया है और आपकी जिंदगी जो है वो सुकून वाली हो गई है?
1: मैंने भाई इस बात को सोचना छोड़ दिया कि दुनिया क्या कहेगी मुझे, और मैंने हर किसी पे ना एतबार करना जो है ना बिल्कुल छोड़ दिया, जिसकी वजह से मेरी जिंदगी में बहुत सुकून है.
0: नहीं तो क्यों एतबार क्यों नहीं करती?
1: मैंने क्योंकि मैंने अपने एतबार को टूटते हुए देखा हुआ है बहुत मरतबा.
0: अच्छा वो तो सारे लोग कहते हैं हमारा लोगों ने ट्रस्ट तोड़ दिया, मैं जिससे भी मिलता हूँ वो यही बात कहता
1: है. क्योंकि ना हम लोग मैंने ना भाई अपनी लाइफ में ना ऐसा बहुत कुछ किया कि मैं हर बात ना हर किसी को बता देती थी, अपनी सबसे सीक्रेट से सीक्रेट बात मैं हर किसी को बता देती थी. जब मुझे जब वो एतबार वो जब यकीन वो बात जब कोई और से मुझे सुनने को मिलती थी ना, तो वाकई में मुझे पता चल जाता है कि हाँ ऐसा भी होता है लाइफ के अंदर. हर कहती है हर किसी को एतबार करके ना अपनी हर एक बात नहीं बतानी चाहिए. और मैंने हर किसी की वजह नहीं कि ना मैंने ये भी छोड़ दिया है कि दुनिया क्या कहेगी, मैंने वो इग्नोर करना बिल्कुल छोड़ दिया और सबको राजी करना भी छोड़ दिया, जिसकी वजह से मेरी लाइफ में बड़ा सुकून है. क्योंकि मैंने अपनी ये भी देखा मैं हर किसी को राजी करती थी फिर भी वो खुश नहीं होते थे. अब मैंने कहा मैंने किसी को राजी ही नहीं करना, मैंने अपनी खुशी के लिए आपस में जो खुशी है मैं वही करूंगी.
0: ओके
1: मैं वही करती हूँ, मैं किसी की सुनती नहीं हूँ सिर्फ सिवाय अपनी मामा के.
0: नहीं तो आप किसी की नहीं सुनते फिर बाकी भी आपकी नहीं सुनते होंगे?
1: नहीं उनकी सुनो जो आपके जिसके ऊपर आपको यकीन है कि हाँ ये बंदा आपको दुखी नहीं करेगा, आपकी बात मानेगा, आपकी बात को रखेगा, उसके ऊपर रखनी चाहिए, हर किसी को नहीं.
0: अभी आपने खुद ही तो कहा कि मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करती.
1: नहीं किसी पे नहीं, यानी कि ना मैं ये कहना चाह रही हूँ मैं हर किसी पे नहीं करती, यानी अपनी मामा पे करती हूँ, या जो चंद हमारी फैमिली में जो कजन होते हैं आंटियों पे, चंद लोग जिनको जिनके ऊपर यकीन किया जा सकता है उन पे करें, हर किसी पे नहीं. यानी कि जो राह चलते पे यकीन नहीं कर सकता ना कोई, तो इसी तरह मैं हर किसी पे नहीं कर सकती. अपनी मेरी काफी दोस्त स्कूल लाइफ की हैं ऐसी जिन पे मैं हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करती, उनमें से चंद एक दो होंगी जिन पे करती
0: हूँ. ओके ठीक हो गया. चलें रिमशा और कुछ कहना चाहेंगी?
1: और यही कहूंगी कि उस शो में मैंने आपको वो जो पिछला शो था मैंने सुना था, लेकिन मैंने इतनी कॉलें की आपने एक भी कॉल पिक नहीं की.
0: मैंने बताया ना मैंने दो कॉल्स पिक की और दोनों ड्रॉप हो गई मुझे वो, फिर उनके सामने
1: आपने दोनों ड्रॉप की हुई थी ना, तो उसके बाद जो है ना काफी कॉलें मैंने की, काफी कॉलें
0: मैं वही तो कह रहा हूँ
1: आज जो है ना एंड तक मैंने ट्राई किया, मैंने कहा भाई ने पिक नहीं करनी.
0: नहीं वो तो पहले तो चले वो शो में बातें इतनी चल रही थी तो लेकिन जब कॉल्स मैंने शामिल करने का तो फिर डिस्टर्बेंस, मैंने कहा डिस्टर्बेंस इतनी होगी छोड़ दो.
1: सही लेकिन आपको लेना
0: चाहिए था, लेना चाहिए ना। पहली कॉल ही ड्रॉप होगी, पहली कॉल ही ड्रॉप होगी, दूसरी कॉल ही ड्रॉप होगी, तो वो मुझे भी उनके सामने बुरा लग रहा था कि यार इस तरह कॉल ड्रॉप नहीं होनी चाहिए थी।
1: और आप शो के अंदर में भाई आप ये भी बोलते थे ना कि जब आप शो स्टार्ट करते थे कि अगर कोई कॉफी पीनी है या चाय पीनी है, अगर मैं नहीं पी सकता तुम लोग भी नहीं पियो, ये डायलॉग आपने छोड़ भी दिया है बोलना, इतना अच्छा तो लगता था।
0: चलें वो आधा तो बोलता हूँ अभी भी, बाकी भी बोल लेंगे।
1: क्योंकि अब आप कहते हो ना कि अगर चाय पीने को मन करे तो पी लो, क्योंकि रात को 12 बजे गैस आती नहीं है।
0: कोई बात नहीं, मैं तो पानी भी, मैं पानी पी ले तो मैं तो पानी भी अपना लेके आता
1: हूँ। ठीक है,
0: चलें, थैंक यू वेरी मच रिम्स, आपका ख्याल रखिएगा।
1: ओके जी, अल्लाह
0: हाफिज। और जी आप लोगों की कॉल से देखते हैं हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है। हेलो, नहीं जी, थैंक यू वेरी मच, ये रीजन है मैंने कॉल उस दिन नहीं ली। अच्छा खैर जी, 051-111-111 and 051-9920-2540 एंड सर आपके मैसेज मेरे पास हैं। 101 एक्सप्रेस मैसेज नाम शेयर के नाम लेकर 4471 पर साथ www.facebook.com/fm101 चैनल पाकिस्तान पर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम, आपकी आवाज बहुत ऐसा आ रही है।
2: आप ठीक आ रही है?
0: अब ठीक आ रही है, वो कहना पड़ता है ना कि थोड़ा ऊंचा बोल लें।
2: ऊंचा कैसे बोलूं, गला खराब है, बंद हो गया है।
0: ओहो अच्छा, तो कौन बात करें, कहाँ से बात करें?
2: सर मुझे आज रेडियो का, रेडियो का हमेशा ही फायदा होता है, आज ज्यादा फायदा हुआ।
0: नहीं मैंने रेडियो को फायदा तो नहीं पूछा, मैंने तो नाम पूछा।
2: नाम बता रहा हूँ, नाम बता रहा हूँ, मैं आतिफ अब्बासी बात कर रहा हूँ,
0: आतिफ अब्बासी बाराकोह से। ठीक है आप बताओ।
2: और रेडियो फायदा ये हुआ कि आपने जब थोड़ी देर पहले कहा ना कि पता चला है कि इस्लामाबाद में बारिश हो रही है, तो मैं बाहर निकल के देखा, छत पे गया हूँ, बारिश हो रही थी और हमारे सारे कपड़े आज धोए थे, छत पे पड़े थे और सारे लोग सोए हुए थे घर में, तो मैं अभी उठा के लाया और बहुत तेज बारिश हो रही है।
0: अब मुझे मुझे इनाम क्या दोगे इस बात पे?
2: यार जो मांगे चाहिए दुआ तो देंगे।
0: यार दुआएं तो सारी देते हैं यार, अच्छा आजकल ये भी ट्रेंड चल पड़ा है, किसी का आप 1 करोड़ का भी काम कर दो ना, वहां से कहे यार मेरी तरफ से दुआएं हैं तुम्हारे लिए, कितने कंजूस हो गए यार लोग। अच्छा चलो ठीक है, 1-1 के लिस्ट वैसे कहते ही है, करते नहीं है।
2: नहीं नहीं आप देखना, आप पढ़ लेना ना, आपको नजर आएगा।
0: चलो सही है, हमारा भी तजुर्बा है। अच्छा मुझे बताओ जो मैंने सवाल किया उस वाले से क्या कहोगे?
2: गला बहुत खराब है यार, मैंने लोगों को ना, दोस्तों को कॉल करनी कम कर दी है, तो बस सुकून है यार।
0: दोस्तों को कॉल करनी कम कर दी, क्यों
2: कम कर दी है यार? वो बस जिसको कॉल करो यार, तुमने याद नहीं किया, रास्ता नहीं किया, कहता यार टाइम नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, तो अब हमने भी छोड़ दिया है, बस हमारे पास भी टाइम नहीं होता।
0: ये वैसे सही बात की है, जो आपको टाइम दे उसको टाइम दो, जो नहीं दे उसे को यार बाना मार दो, हमारे पास भी टाइम नहीं है, बिजी हूँ, ये वो दिस एंड दैट।
2: फैसला कर लिया, इसी ईद से फैसला कर लिया।
0: लाइफ अच्छी हो गई है, सुकून सुकून वाली हो गई है, चलो गुड हो गया, गुड हो गया। और कुछ कहना चाहोगे? नहीं नाराजगी वाली बात नहीं है, लेकिन वो जैसा लोग करते हैं ना, समटाइम्स आपको भी वैसा करना पड़ता है, उस तरह बनना पड़ता है।
2: दुआ करें मेरा गला और तबीयत ठीक हो।
0: चलो अल्लाह करे आपका गला ठीक हो जाए, किसी को दबा दे गला।
2: अच्छा बहुत शुक्रिया तमाम सुनने
0: वालों का, ओके अल्लाह हाफिज़। अच्छा चलिए नेक्स्ट कॉलर देखते हैं हमारे साथ कौन है। 051-111-111 and 051-9020-2540 पर। और अच्छा नाज़िम शाहिद ने हमारे साथ पार्टिसिपेट किया, आपने कहा कि प्यार छोड़ दिया है हमने, ठीक है जिससे प्यार करते थे उसको छोड़ दिया आपने, तो अच्छा आपकी ज़िंदगी जो है अब सुकून वाली हो गई है, ठीक हो गया है। अच्छा जी इसके अलावा हमारे साथ कुछ मैसेज हैं, उसमें नाम लिखे हुए हैं, जो मैंने सवाल किया उसके वाले से कोई बात नहीं है। अच्छा माजबीन कह रही हैं कि बारिश जो है वो स्टार्ट हो गई है और बस देख लें, बारिश तो फिर होनी थी और अब आई डोंट नो ये बारिश जो है वो मंडे को कब तक कितने टाइम तक होती रहेगी ये तो मुझे भी नहीं पता।

0: All right, ji, 051-111-111-0519202540. Assalamu alaikum. Hello? देखा ये वजह है। आप समझ आ रही है क्यों मैंने कॉल्स पीछे शो में छोड़ दी थी?
1: रात 8 बजे।
0: और क्या है जी, इसके अलावा जी फातिमा हमारे साथ लाहौर से हैं। आपने कहा है कि मैंने दूसरों की केयर करना छोड़ दी है, अब मैं सिर्फ अपनी केयर करती हूँ। ओके, और क्यों दूसरों की केयर करना क्यों छोड़ी है आपने, इसकी वजह तो बताए ना। और अपनी अपनी देखो, सेल्फ केयर तो इंसान को करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए, हर मतलब हर मौके पे करना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप अपनी केयर करोगे तो यार ठीक रहोगे ना, अगर अपनी केयर नहीं करोगे तो फिर जिंदगी के इतने बड़े बड़े काम जो है वो कैसे करोगे। अस्सलाम वालेकुम
2: जी। अस्सलाम वालेकुम। सलाम से मारिया शहजादी अर्ज कर रही
0: हूं। कौन अर्ज कर रही है?
2: मारिया शहजादी।
0: मारिया शहजादी कहाँ से बात कर रही है?
2: लाहौर से अर्ज कर रही हूँ।
0: लाहौर से अर्ज कर रही है, अच्छा। तो मारिया शहजादी क्या कहना चाहेंगी आप?
2: मैं कहना चाहूंगी कि इतना संगदिल भी नहीं होना चाहिए ना।
0: कितना
2: मतलब कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने दोस्तों को छोड़ दिया, हमने दोस्तों की केयर करनी छोड़ दी। वो ठीक है जो अपनी केयर नहीं करता।
0: अच्छा मुझे बता, एक बात तो सुने मारिया, अच्छा सुने ना एक तो आप मारिया फिर शहजादी भी हैं, दूसरों की बात ना करें ना, अपनी बात करें ना।
2: नहीं नहीं मैं बहुत गलत बात नहीं कर रही।
0: मैं कह रहा हूँ कि अपना जवाब दे दे, ये डिस्कस ही ना करें कि किसने क्या कहा किसने क्या कहा।
2: मैं चाहती हूँ कि मेरी तरफ से जो है ना ख्याल कि भाई आप अपनी तरफ से करो, अगले को कभी तो ख्याल आ जाएगा।
0: है एक ही जवाब है, मैं कुछ पूछे तुझे कुछ दसे है।
2: भाई मैं मेरे ख्याल में जहाँ तक समझ आई है, मैं ये कहती हूँ की इतना भी संदिल होना जो है मेरे ख्याल में बेहतर नहीं है ना।
0: अच्छा मैंने क्या पूछा प्रोग्राम में?
2: मैंने बस अभी सुना मैंने, और वो सुना कि कुछ लोग कह रहे थे हमने दोस्तों को छोड़ दिया, उनकी बात मैं नहीं कर रही, लेकिन मैंने जो लोगों की बात सुनी ना उस पर बात कर रही हूँ।
0: मेरे प्रोग्राम में ना मेरे सुने ना, मेरे प्रोग्राम में सख्ती से मना है किसी दूसरे की बात पे कमेंट नहीं करना, अपनी बात करनी है।
2: तो मैंने अपनी बात बताई ना आपको, अपनी कि मेरी बात ये है कि इतना भी संगल नहीं होना चाहिए।
0: थैंक यू मारिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ऑलराइट जी, वही देखे पाकिस्तानी तरक्की क्यों नहीं करते, जो लोग नहीं करते वो इसलिए नहीं तरक्की करते कि जो उनको कहा जिस चीज से मना किया जाए ना वो काम लाजमी करते हैं, ठीक है। दुनिया में लोग इसलिए तरक्की करते हैं कि जो उनको कहा जाए उसको फॉलो करते हैं, तो ये फर्क है। तो मैंने प्रोग्राम में स्टार्ट में कॉल से पहले कहा था सुन के कॉल करनी है, और मैंने टॉपिक मेरे ख्याल से 15 से ज्यादा बार रिपीट कर दिया हुआ, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं पता कि प्रोग्राम में क्या बात हो रही है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं ठीक ठाक हूँ। अनिला आप ठीक है? क्या कहना चाहेंगे? बस वो कुछ टाइम के मेहमान है, मौसम भी।
3: आपको याद है 2-2.5 साल पहले मैं आपसे कहा करती थी कि मेरा इतना जी चाहता ना कि अल्लाह ऐसा कर दे कि 2 दिन गर्मी रहा करे और 3-4 दिन बड़ा अच्छा मौसम रहा करे, उसके बाद फिर 2-3 दिन गर्मी ना, फिर 3-4 दिन बहुत अच्छा मौसम, ऐसे करते करते सर्दियां आ जाए गर्मियां चली जाए।
0: नहीं हर मौसम थोड़ा बता के तो जाता है कि मैं आया हूँ।
3: तो हाँ, अभी वैसे बहुत तेज हवा चल रही है, मौसम भी बादल टाइप सा भी कुछ हो गया है, तो मौसम अच्छा हो गया यहाँ लाहौर में।
0: ओके, यहाँ पर बारिश हो रही है अभी जिस तरह आतिफ बता रहे थे, तो दो क्या कहना चाहेंगे?
3: हम एक दूसरे को बता कर रहे हैं तो अल्लाह करे यहाँ भी आ जाए। हालांकि पीछे मौसम अच्छा रहा है 1-2 दिन। टॉपिक में मैं ये कहूंगी कि लोगों की जो परवाह करनी छोड़ देनी चाहिए, कौन क्या कह रहा है इसकी मैंने टेंशन लेना छोड़ दिया। हर बात में किसी ने आपको कोई ना हंसते हुए देख सकता है और रोते में अब तक किसी ने आके आंसू नहीं पहुंचने सकते, इसलिए ना दूसरों की केयर करनी इस बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए लोगों की परवाह करनी कि हाय अल्लाह मैं ये करूंगी तो ये ऐसे कहेंगे, ये करूंगी तो ऐसे कहेंगे, मैं क्या करूँ। इसलिए मेरा जो जी चाहता मैं करती हूँ, जो नहीं दिल चाहता मैं नहीं करती,
0: ठीक है।
3: इसलिए मैं लोगों की परवाह नहीं करती है। आई डोंट केयर, कह रहे ना जो कह रहा होता है, किसी ने कौन सा कुछ हमारे लिए अच्छा करके देना होता है।
0: हाँ करना तो किसी ने भी नहीं है, जो करना है आप तो खुद करना है।
3: हाँ और पता है दूसरे लोगों को बस वो कहते ना चूलो रही होती है, वो देखो ले देखो लो कि इसने ये कर लिया, हाँ इन्होंने गाड़ी ले ली है, हाँ इन्होंने ये कर लिया, और मतलब उनको बस चुभ रही होती है. तो मुझे उनकी वो चुभन में मजा आता है, चुभने लो.
0: ओके ओके.
3: इसलिए मैं कहती हूँ चिल करे, एंजॉय करो लाइफ को, आज है कल नहीं है, बस किसी के लिए ना बुरा सोचो ना बुरा करो.
0: ओके.
3: और कोशिश करें कि किसी की दिल आजारी ना हो, बस मैं ये चीज का ख्याल रखती हूँ, अदरवाइज मैं कहती हूँ करना जो करता है.
0: ऐसा ही है.
3: जबरदस्त अच्छा लग रहा है, और आज काफी दिनों बाद आपसे बात हुई है. बाकी सब आ रहे हैं, सुनते हैं कौन कौन क्या कहते हैं. ठीक है,
0: थैंक यू. थैंक यू अनिल, हाफिज. Alright, जी, अपने काम से काम रखना चाहिए, और लोग क्या कहते हैं ये सबसे ज्यादा कॉमन बात हमें सुनने को भी मिलती है, लोग क्या कहते हैं इस चीज को छोड़ दें. अस्सलाम वालेकुम. कौन बात कर रहे
1: हैं? बात कर रहे हैं, आपकी बहुत सारे आ रहे हैं
0: यार. एक ही हसनैन है यार, आप लिखोगे हसनैन रजा HASNAIN स्पेस RZA, एक ही बंदा. हाँ, वो आपको मिल जाएगी, उसको फॉलो कर लें, करना है तो कर लें, नहीं तो ब्लॉक कर दें. ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़. ऑलराइट जी, आईडी मेरी एक ही है यार, मेरी तो पता नहीं कितने सालों से एक ही प्रोफाइल है फेसबुक पे, एक ही पेज है फेसबुक पर, इतने टाइम से. इंस्टाग्राम को तो मैंने प्रमोट ही कभी नहीं किया, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि हाँ यार करना चाहिए, लोग इंस्टाग्राम को काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं, तो आप लोग सर्च कर सकते हैं, कोई भी करना चाहे हसनैन रजा लिखें, आपको मेरी आईडी मिल जाएगी. मेरी अपनी तस्वीर लगी हुई है यार, मैं कौन सा दूसरों की तस्वीरें लगाता हूँ, तो मेरी तो हमेशा से अपनी वीडियोस होती हैं, अपनी पिक्चर्स होती हैं, और वही आपको नज़र भी आ जाती हैं, और लोगों को मिल भी जाता हूँ. वो अलग बात है, अगर आप किसी और को मैसेज कर दें, किसी और हसनैन को, तो अब जारी बात है मेरे नाम से और 10 और लोग भी होंगे,

0: অলরাইট জি, কলার দেখতে হবে আমার সাথে কোন। আসসালামু আলাইকুম।
1: হ্যালো, জি কোন, কাহাঁ সে? জি ওয়ালাইকুম আসসালাম। কোন ফ্রম জার্মানি? হামনা ফ্রম জার্মানি। ওকে, ویسے আপনি বাকি জার্মানি মে?
2: यस।
1: আচ্ছা, মুঝে ویسے প্রুফ করেন কি আপ জার্মানি মে? মানে কি কেস মুঝে প্রুফ করেন আপ জার্মানি মে?
2: क्या कह रहे हैं?
1: मैंने कहा मुझे वो प्रूफ को कहते हैं साबित करेंगे आप जर्मनी में।
2: क्यों? फिर भी हाल चाल तो मैं आपका नहीं पूछूंगी। आप वही तो कहती हैं कि आप ठीक हो। मैं टॉपिक ये कहना चाहूंगी कि मैंने ओवर थिंकिंग करना छोड़ दिया और मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो गई।
1: ओवर थिंकिंग करना छोड़ दिया
2: जी? यस।
1: उसे लाइफ
2: के मैं पहले पहले हर बात पे यानी कि सोचती रहती थी, अब मैंने छोड़ दिया।
1: नहीं तो उसे लाइफ कैसे अच्छी हुई है? कैसे सुकून वाली है? कैसे कैसे सुकून वाली लाइफ हुई है उससे?
2: बस यानी कि छोड़ दिया है। अब मैं पहले जो भी मुझे कोई बात करता था, मैं इतनी सोचती रहती थी, मैं कहती थी इसने मुझे क्यों किया है। अब मैंने वो छोड़ दिया है ना, तो मेरे माइंड में मैंने कि बहुत सुकून है। मैं खुद देखती हूँ कि मेरी लाइफ में कितना सुकून है।
1: ओके।
2: यानी कि हर बात पे सवार नहीं करती अपने सर पे, हर बात को जो कर दे बस इग्नोर कर दिया। यानी कि ये नहीं मैं करती किसी ने क्यों की, पहले मैं बहुत करती थी बहुत ज्यादा। फिर मैंने यानी अब करना छोड़ दिया तो बहुत अच्छी हो गई मेरी लाइफ। मुझे खुद दिखता है कि मेरी लाइफ कितनी अच्छी हो गई है इस बात से।
1: ओके, चलें, ये अच्छी बात है। और क्या कहना चाहेंगी आप?
2: बस बहुत शुक्रिया आपने कॉल पे की। थैंक यू स्नैन भाई।
1: चले, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।
2: थैंक यू, अल्लाह हाफिज।
1: और ये जी ओवर थिंकिंग भी एक बड़ा मसला है, और जो करते हैं उनको पता है कि ओवर थिंकिंग से क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा ऊंचा बोलिएगा, आपकी आवाज बहुत दूर से आ रही है।
3: वालेकुम अस्सलाम
1: जी, कौन बात कर रही है, कहाँ से बात कर रही है?
3: मैं बिस्मा बात कर रही हूँ, लाहौर से।
1: बिस्मा फ्रॉम लाहौर। जी बिस्मा, क्या कहना चाहेंगी आप?
3: मैं ये कहना चाहूंगी कि मतलब मैंने ज्यादा दोस्त बनाना छोड़ दिए हैं, और जो मुझे दोस्त बनाते थे और उनसे बातें करना छोड़ दी हैं। तो बस अब एक दोस्त है, उसके साथ ही टाइम स्पेंड करती हूँ, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और बस उससे बात करती हूँ तो काफी सुकून आ गया जिंदगी में।
1: अच्छा, नहीं तो पहले पहले ज्यादा दोस्तों से आपने क्या सोच के कम दोस्त किए, क्या वजह थी इसकी?
3: मतलब मैं ना खुद दोस्त नहीं बनाती थी, जैसे कहीं जाना तो अपने आप ही दोस्त बन जाते हैं। ठीक है, तो फिर वो खुद ही जैसे आपके क्लोज होते हैं, या आपसे जैसे वो होता है रिश्तेदारी बना रहे होते हैं कि तुम बहुत अच्छी लगती हो, तुम फ्रेंड हो, हम फ्रेंड्स हैं। वो पहले कह देते हैं कि हम अब फ्रेंड्स हैं।
1: Okay.
3: मैंने तो कभी किसी को खुद फ्रेंड नहीं बनाया ना माना है। तो बस एक फ्रेंड है जो मैंने अभी सोच समझ के बनाई है, उसको मैंने बेस्ट फ्रेंड बनाया। तो फिर यानी कि जो लोग मुझे ऐसी बातों में भी कह देता था ना कि मैं हम अब फ्रेंड्स हैं, तो मैं वाकई सीरियस हो जाती थी। यानी कि जब कोई बात करती थी ये वो, मतलब होता है ना कि कोई राज आता भी कहते कि कोई बात नहीं, हम तुम्हारे दोस्त हैं, तो तुम फिक्र ना करना, कोई हो गया ऐसा मामला तो हम हाजिर हैं। ठीक है, तो मैं वाकई सीरियस हो जाती थी। तो फिर अब मैंने कहा यार ये तो ड्रामेबाजी है, बल्कि ये है ही ड्रामेटिक वर्ल्ड है, ये सारी दुनिया ड्रामेबाज है, तो बस छोड़ो। ये क्या मुसीबत है, मैंने मुफ्त में पा ली है। मैंने खुद भी बनाई नहीं दोस्त, इन्होंने खुद ही मुझे बोले कि हम दोस्त हैं। मैं ऐसी इनको टाइम देती हूँ, इतना टाइम वेस्ट करती हूँ, ना मुझे इनसे कोई काम है, ना मतलब है, ना कोई वास्ते, मैं कितनी साइको हूँ। तो मैंने ये छोड़ दिया है, तो अब मेरी जिंदगी बहुत सुकून में है। तो बस और क्या बताऊँ।
1: ओके, मतलब क्या
3: एक बात पूछनी थी, मतलब जब मैं कॉल करती हूँ मेरी हार्ट बीट क्यों तेज हो जाती है, और मुझे शिवरिंग क्यों होना शुरू हो जाती है? मैं जब भी किसी आदमी से बात कर लूँ तो ऐसा क्यों होता है? इसका कोई हल नहीं है, कोई सोल्यूशन हो, ऐसा ना हो? क्योंकि मुझसे भी बात भी नहीं होती, मेरी आवाज भी शायद काम फील आपको फील हो रही हो या शायद ना।
1: नहीं, उसमें देखें यही है कि जब इंसान एक्साइटेड होता है तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। ठीक है,
0: तो कॉल्स करती रहा करें, और उससे ये
3: मैंने
0: तो
3: फर्स्ट टाइम कॉल की है, और बस ये बताने के लिए कॉल की थी कि आपको हम सुनते हैं और कॉल नहीं करते।
0: चले, थैंक यू वेरी मच, आपने कॉल किया और बताया कि आप सुनती हैं।
3: बस मुझे नाम अच्छा लगता है, स्नेल ये मुझे नाम बड़ा प्यारा लगता है, बड़ा प्यार है इससे बस। और आपको आपसे बात करके अच्छा लगा, शो अच्छा होता है आपका और आप अच्छे हो, नाम आपका बहुत प्यारा है, तो
0: चले
3: थैंक यू।
0: थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। और भाई जी देखो, जब जब भी आप कहीं पे जाते हो, फॉर एग्जांपल आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, या आप फॉर एग्जांपल एक बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, आप स्टेज के ऊपर जा रहे हो, ठीक है, होता है मैक्सिमम लोगों के साथ होता है, जब आप रेडियो है, आप माइक्रोफोन के सामने आ रहे हो, टीवी पे कहीं कैमरे के सामने आ रहे हो, जो फर्स्ट टाइम होता है ना, उस टाइम ये एक नेचुरल सी फीलिंग होती है कि आप थोड़ा सा ज़रा ना हिचकिचा रहे होते हो, आप जिस तरह इन्होंने कहा कि कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा कम होता है, आप शाय फील कर रहे होते हो, लेकिन वो ऐसा ऐसा जैसे आप यूज टू हो जाते हो ना, आते रहते हो, तो उसमें ये होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, आपको पता चलता है कि यार कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है, आप ये कर सकते हो काम। तो ये है कि डिपेंड करता है आपके ऊपर, जितना आप फ्रिक्वेंटली वो काम करोगे, आपका डर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी
4: हैदर साहब बात कर रहे हैं?
0: कौन
4: आप? हैदर साहब बात कर रहे हैं?
0: नहीं जी,
4: ये FM 101 नहीं है?
0: FM 101 है, लेकिन आप नाम गलत ले रहे हैं।
4: अच्छा, हसनैन साहब है?
0: जी जी, आप कौन बात कर रहे हैं?
4: सुन रहा हूँ, मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ।
0: नहीं, नाम क्या है आपका?
4: नासिर अब्बास नाम है जी मेरा, नासिर अब्बास।
0: नासिर अब्बास, और कहाँ पे प्रोग्राम सुन रहे हैं?
4: सर इस वक्त हुंजा में सुन रहा हूँ आपको, वादी हुंजा में।
0: वाह यार, हुंजा से आप कॉल कर रहे हो, सारा इस्लामाबाद उठ के हुंजा गया हुआ है, सकर्दू गया हुआ है।
4: सर मौसम भी बड़ा प्यारा है, हुंजा में मौसम ठंडा है।
0: हाँ मुझे पता है, मैंने अपने बहुत सारे जानने वाले उनकी वीडियोस देखी हैं, और कल मैं यही सोच रहा था कि शायद मैं ही इस्लामाबाद में, बाकी सारे हुंजा सकर्दू में।
4: अच्छा, तो मैं आपसे ये आज करना चाह रहा हूँ कि आजकल कुछ अफवाहें फैल रही हैं, लोगों के में कुछ अफवाहें फैलाई हुई है कि गिलगित बल्तिस्तान खासकर हुंजा के लिए रास्ते बिल्कुल ही खराब है, फ्लड्स आए हुए हैं, और इस तरह के ना कोई गलत किस्म की अफवाहें फैलाई हुई है, तो बिल्कुल ऐसा ही नहीं है। मैं जितने भी आपके सामने में इस वक्त सुन रहे हैं उनको ये बताना चाहूंगा कि बिल्कुल रोड वगैरह साफ है और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेफ है।
0: ऐसा ही है, ऑब्वियसली लोग लोग बड़े तेज हैं, लोगों को पता चल जाता है सब कुछ, रोड्स खुली हुई हैं।
4: जो सोशल मीडिया पे कुछ अफवाहें चल रही थी तो मैंने कहा चलो उसी में करेक्शन कर लो।
0: तो मुझे बताओ, जो सवाल मैंने किया उस हवाले से कुछ कहना चाहोगे?
4: सर नहीं, इसके बारे में मेरा कोई खास इतना वो नहीं है, कंसर्न नहीं है, तो बस आप जरूर हमजा आइएगा,
0: चलो। थैंक यू वेरी मच नासिर, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़। ऑलराइट जी, हुंजा से कॉल, और यार बड़ा दिल कर रहा है आजकल वैसे जाने को, लेकिन वक्त नहीं मिल रहा। अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम अस्सलाम
0: जी, कौन कहाँ से? अरशद अली फ्रॉम लाहौर। लाहौर से आज बड़े कॉलर्स हैं, क्या बात है, मुझे लग रहा है लाहौर में जा रहा है प्रोग्राम सिर्फ।
5: असल में मैं आपका शो हर बार सुनता हूँ, लेकिन कॉल मेरी आज पहली मर्तबा मिली है।
0: अच्छा, तो क्या
5: मुश्किल कॉल मिली गया? बहुत मुश्किल, मुझे नंबर ही था आपका, पता नंबर ही मालूम नहीं था, मगर आता था मिलता ही नहीं था नंबर आपका। तो आज देख लो, अल्लाह ने मेरी इस्लामाबाद में पहली मर्तबा बात कराई है, वो भी हसनैन रजा भाई से।
0: तो क्या कहना चाहोगे अर्शद?
5: सर आप सवाल कहे थे कि इतबार के हवाले से।
0: नहीं, मैंने इतबार के हवाले से कॉल नहीं, वो सवाल नहीं किया।
5: अच्छा, वैसे आपका सवाल क्या था ये मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ,
0: मैं आपकी कॉल के बाद बताऊंगा।
5: अच्छा चले, फिर एक शेर सुन ले।
0: नहीं, शेर शेर और शायरी वाला प्रोग्राम नहीं है, ठीक है?
5: अच्छा, आपका शायरी वाला प्रोग्राम
0: नहीं?
5: चले, बहुत शुक्रिया,
0: थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ऑलराइट जी, ये भी सही है। Anyways, ابھی میں پروگرام میں ایک ٹریک پلے کروں گا اور نیکسٹ ٹریک آپ کے لیے میں نے کیوں کیا ہوا ہے عمیر جسوال کی آواز میں اور ٹریک ہے ویسے عمیر جسوال کی لائف بڑی چینج ہوئی ہے پچھلے ایک دو سال میں میں کافی ان کی پوسٹ وغیرہ دیکھتا رہتا ہوں پچھلی آٹھ کو کیونکہ آپ کی لائف میں کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ آپ اپنی زندگی جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہو 100% چینج کر دیتے ہو میرے دل کو یوں جکڑا تھا. Anyways, sometimes جو ہیں وہ چینجز جو ہیں نا بہت اچھی ہوتی ہیں پازیٹو ہوتی ہیں آپ کے لیے بھی اور آپ کے ارد گرد کے لوگوں کے لیے بھی. Anyways, ٹریک کو انجوائے کیجیے. میرا نام حسین رضا ہے, آپ سن رہے ہیں FM 101 انٹرنیشنل اور آپ کا میرا ساتھ ہے ٹھیک رات کے 2 بجے تک.

0: Alright जी, कुछ आपके मैसेज शामिल करते हैं. हमारे साथ पार्टिसिपेट किया है किसने? अच्छा, मैसेज है मेरे पास गुल का. आपने कहा है कि चल आशु आपको अच्छा लगा था. आपने कहा मैंने क्रॉस कमेंट करना छोड़ दिया है. पहली दफ़ा आपकी पोस्ट पे की थी और काफ़ी साल पहले. अच्छा, फिर आपको समझ आ गई कि नहीं करनी, फिर आपने नहीं किया. और आपने कहा वैसे मंडे और बारिश मान लिया आपने, ठीक है मान लिया, गुड. और अच्छा, क्या मजे की बात है. आपने कॉल पे बतानी है तो कॉल करें आप, नंबर मिलाएं, और ताकि आपकी कॉल मिले तो हम भी सुन सकें कि आप क्या कहना चाह रही हैं. और 051-111-101 and 051-920-2540 पर. इसके अलावा जी हमारे साथ फातिमा ने पार्टिसिपेट किया है. आपने कहा कि रीज़न ये है कि आप जितना भी लोगों की केयर कर लो बट वो फिर भी आप ही कदर नहीं करते. देखो ये तो एक यूनिवर्सल बात है और सबसे ज़्यादा ये दुनिया में यही बात सुनने को मिलती है कि आप किसी की कितनी भी केयर कर लो वो आप ही कदर नहीं करते हैं, और बाद में फिर आप सर पकड़ के बैठ लेते हो यार मैंने इसकी इतनी केयर क्यों की. सो फिर इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं यार सिंसियर हुआ ही ना करो किसी के साथ. सबसे बेस्ट जो है वो यही है. तो बस एक डिस्टेंस रखा करो और ज़्यादा क्लोज होने की ज़रूरत ही नहीं है, और ज़्यादा लोगों के काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, ज़्यादा लोगों की सुनने की ज़रूरत ही नहीं है. अच्छा जी, एनीवेज जी, आपकी कॉल्स हम साथ साथ प्रोग्राम में शामिल करेंगे, साथ साथ आपके साथ बातें करते रहेंगे. थोड़ा मैच का मैं अपडेट आपको दे दूँ. जो बेल्जियम और इजिप्ट के दरमियान जो है चल रहा है, सो अभी तक 1-0 है, इजिप्ट का एक स्कोर है और बेल्जियम कोई गोल नहीं कर सका है और बड़ा टफ टाइम दे रहा है इजिप्ट. सो लेट्स सी, अभी कुछ टाइम बाकी है. अभी ओहो, अभी थोड़ी देर पहले जो है वो गोल होते बच गया है. सो अब गोल करने के लिए बॉल जो है वो गोल के अंदर मारनी पड़ती है ना, बाहर आप मारेंगे फिर तो गोल नहीं होगा ना. अस्सलाम वालेकुम, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, हेलो
1: हेलो
0: जी, अस्सलाम वालेकुम, आपकी आवाज आ रही है. चलो थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम.
2: हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं?
2: अस्लम भाई, फजल महमूद बात कर रहा हूँ, कराची से इंजन गर्मी वाला
0: जी. फजल भाई क्या कहना चाहेंगे?
2: बस आपका शो सुन रहा था यार, एंजॉय कर रहा था.
0: अच्छा,
2: और क्या कहूँ मैं.
0: ओके, जो सवाल पूछे उस वाले से कुछ कहना चाहेंगे?
2: यार सवाल के बारे में क्या बोलूँ, बस मैं सवाल के बारे में कॉलर वो बोल रहे वो सुन रहा हूँ मैं. बाकी मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि शो आप तक जा रहा है, मेरे दोस्त भी सुन रहे हैं आपका शो.
0: ठीक हो गए, चले, थैंक यू, अल्लाह हाफिज. और भाई जी, नेक्स्ट कॉलर देखते हैं हमारे साथ कौन है. अस्सलाम वालेकुम.
3: वालेकुम सलाम अस्नैन भाई, माशाल्लाह हमेशा की तरह अच्छा शो होता है. परवेज अख्तर
0: जी, परवेज भाई खैरियत है सब? मैंने खैरियत जी जी, आपकी आवाज आ रही है, खैरियत है सब?
3: बस हल्की हल्की बूंदाबांदी भी, हवा भी चल रही है. दुआ करें अल्लाह रहमत की बारिश बरसा दे 2-4 घंटे.
0: इंशाल्लाह इंशाल्लाह मौसम बेहतर.
3: ये आपके शो में बस कोई कुदरती असाब होता है, मौसम चेंज हो जाता है जब आते हैं.
0: बस देख लें, बस कुछ टाइम ऐसा है, उसके बाद फिर मुझे नहीं पता कैसा होगा.
3: कुछ दुआएं होती है ना, इंसान कुछ ऐसे काम कर लेता है जिसमें जो है ना अल्लाह की मदद भी हो जाती है और दूसरों की दुआएं भी लग जाती है.
0: ये तो है,
3: लेकिन करें दुआ में बड़ा असर होता है. तो टॉपिक मैं यही कहूंगा कि मैं सुनता सब क्यों, एक कान से सुनता हूँ दूसरे से निकाल लेता हूँ तो मुझे बहुत सुकून मिल जाता है. और सबसे मेन चीज है कि अपने दिल को अंदर से बिल्कुल साफ रखना, दूसरों के लिए बुरा नहीं सोचना. अपने अंदर से जितने इंसान के अंदर से दिल जितना साफ होगा इतनी अल्लाह की मदद आएगी और इंसान और सुकून होगा, बिल्कुल उसको कल भी सुकून मिल जाता है, फ्रेश हो जाता है इंसान. दूसरों की बातें जहन में रख के बैठा के बंदा चलता रहे, रिपीटता रहे, तो यकीन करें फिर सेहत खराब ही होती है. भाई यार दूसरों की सुनो और उसको कान से निकाल दो. अपनी अच्छी सोच रखनी चाहिए और दूसरों के लिए अच्छी, और ये कोशिश करनी चाहिए कि अपनी हाथ और जुबान से किसी दूसरे भाई को तकलीफ ना हो. तो इंसान के अंदर ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए सर जिसको देखकर दूसरे लोग खुद मुतासर हो. तो मेरी इतनी पैरा लिखा नहीं हो, तालीम नहीं है, 6-7 क्लास पढ़ी है, लेकिन आप लोगों से रेडियो से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है. आप जैसे अच्छे अच्छे आगे आते हैं और माशाल्लाह क्या बात है. तो हमें रेडियो से भी मोहब्बत है सर.
0: ओके,
3: तो अल्लाह आपको सलामत रखे सर, इसी तरह हम आपको सुनते रहे. अल्लाह हाफिज.
0: चले थैंक यू प्रवेश भाई, अल्लाह हाफिज.
3: अल्लाह
0: अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम,
4: सोनिया बात कर रही हूँ.
0: जी सोनिया कैसी हो आप, ठीक ठाक हो?
1: मैंने जो आपको बताने की कॉल की थी, मैं 3 माह से बहुत बीमार हूँ।
0: ओहो, चले गेट वेल सून।
1: आप दुआ कीजिए, किसी की भी दुआ लग जाए बस, और कुछ नहीं।
0: चले अल्लाह पाक आपको सेहत दे। थैंक यू। ऑलराइट जी, बिल्कुल क्यों नहीं दुआ करेंगे आप, आपके लिए हमारी बहुत सारी दुआएं कि आप जल्दी ठीक हो जाएं। और समटाइम्स लाइफ में टाइम आता है, कभी कभी आपको समझ नहीं आ रही होती कि हो क्या रहा है, कभी आप डाउन हो जाते हो, कभी आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, कभी सेहत के इश्यूज बन जाते हैं, बहुत सारी ऐसे मामलात होते हैं। लेकिन कल मैं एक डायलॉग सुन रहा था कि जितनी बार भी लाइफ में आप गिरो तो हमेशा आपने जो है अपने आप को वापस उठाना है और हिम्मत दिखानी है कि यार आप दोबारा जो है ठीक हो सकते हो। सो जहाँ आप हिम्मत आ गए वहाँ पर दैट्स इट, खलास।

अभी मैं काफी देर से एक मुस्तफा जाहिद का ट्रैक जो है वो ढूंढ रहा हूँ, और कभी कभी आपके फोल्डर से चीजें जो है वो डिलीट हो जाती हैं और आप ढूंढते रहते हो, आपको मिलती नहीं है। चले कोई बात नहीं, अब आई डोंट नो कि वो किधर गया, कहाँ गया, किसके पास चला गया, किसी ने डिलीट कर दिया। तो अब चले हम कोई और ट्रैक जो है वो हम शामिल कर लेते हैं प्रोग्राम में। दिल मेरा मुस्तफा जाहिद का ये कि उनका ट्रैक ही प्रोग्राम में शामिल हो। सो अभी नेक्स्ट ट्रैक जो है मैं प्ले करने जा रहा हूँ। अच्छा, अब ये वाला ट्रैक भी घूम गया। वो कह रहे हैं कि मुस्तफा जाहिद को प्ले नहीं करना, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, करेंगे हम उन्हीं को प्ले।

0: ऑलराइट लिसनर्स, वेलकम बैक टू एफएम मोरवा इंटरनेशनल। मुस्तफा जाहिद की आवाज़ में आप ट्रैक सुन रहे थे। कैसे अभी जब मैंने ये ट्रैक प्ले किया तो मुझे याद आया कि मैंने मुस्तफा जाहिद को, मैंने आई थिंक लास्ट ईयर मैंने कहा था कि यार मुस्तफा भाई क्यों नए ट्रैक्स भी आपके आने चाहिए। उस टाइम उन्होंने एक पोस्ट भी लगाई थी फेसबुक कि मैं अपनी नई एल्बम के ऊपर काम कर रहा हूँ, लेकिन क्यों नहीं आई यार, एक साल हो गया। और ये वैसे मेरा वैसे बड़ा गिला है ये हमारे आर्टिस्ट से कि यार कोई तीन साल में एक गाना आता है, वो अगर आपके एक साथ जो है वो पांच छह गाने हिट हो गए तो उसके बाद आप पाँच साल के लिए कोई गाना बनाना भूल जाते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। देखो एक आर्टिस्ट का काम है सॉन्ग्स बनाना, तो अगर जिस वजह से आप को लोग पसंद करते हैं तो फिर जाहिर बात है वो वेट भी करते हैं कि आपका नया ट्रैक कब आएगा। तो जितने भी आर्टिस्ट हैं उनको सॉन्ग्स जो हैं वो बनाते रहना चाहिए ताकि उनके फैंस जो हैं वो नए नए सॉन्ग्स जो हैं वो सुन के इंजॉय करें। और आपके पास कॉन्सर्ट्स पे भी स्पेसिफिकली जब आप किसी कॉन्सर्ट पे जाओ तो वहाँ पर कोई एक ना एक ऐसा नया सॉन्ग होना चाहिए जिसको लोग सुने। तो देखो आजकल सोशल मीडिया का दौर है जिसकी वीडियो बना के जब शेयर करेंगे ये सॉन्ग जो है ना ज़बरदस्त है, तो कुछ इस तरह के चेंजेस होनी चाहिए। और खैर जी, आपसे मैंने पूछा ये है कि मुझे बताओ आप के कोई एक बात जिसके बारे में आपने सोचना या केयर करना छोड़ दिया है और आपकी लाइफ जो है वो बहुत पीसफुल हो गई है। सो कॉल्स की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे साथ कौन है, कहां से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, कोई कॉल नहीं, कोई आवाज नहीं, चलो ठीक हो गया। अच्छा खैर जी, कुछ आपके मैसेज हम देखते हैं साथ साथ जो हमारे पास आ रहे हैं। हमारे साथ जी जाहिद ने लाहौर से पार्टिसिपेट किया है। आपने कहा है कि मैंने दूसरों की राय लेनी छोड़ दी है और काम वो करो जो खुद को अच्छा लगे। 100 में से 2% लोग अच्छा मशवरा देते हैं, बस बाकी अपने बारे में सोचते हैं। ये जो बात आपने की है ना, ये बहुत एक्यूरेट बात की है जाहिद, कि जब कोई आपको अच्छा मशवरा देता है ना वो लोग बहुत कम होते हैं। ज़्यादातर लोग जो है ना वो बस वैसे ही मशवरा दे देते हैं, ठीक है, उन्हें नहीं पता होता इससे आपको फ़ायदा होना है नुकसान होना है बस। इसलिए कोशिश करनी चाहिए जो आपको बेहतर लग रहा है ना, आप में इतनी डिसीजन लेने की पावर होनी चाहिए और इतनी सोच समझ होनी चाहिए। देखो आजकल दौर ऐसा दौर देखो ना कैसा है, चैट जीपीटी का दौर है, जेमिनी का दौर है। आप वहाँ पर लिखते कोई सवाल लिखो, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही ना, ये हर कोई कर रहा है, ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही आप जस्ट उधर लिखो, ठीक है, आपके ऊपर जो है एक पूरी डिटेल्स जो है आपके पास आ जाएंगी। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कल कोई इंटरव्यू आपको समझ नहीं आ रही कि मैं उस इंटरव्यू में क्या करूँ, ठीक है, अगर आपको कोई फॉर एग्ज़ाम्पल किसी वीडियो शूट पे जाना है, किसी ने एक्टिंग करनी है, उसे भी समझ नहीं आ रही क्या करूँ, आप जस्ट ये जेमिनी या चैट जीपीटी इन जगहों पर लिखो ये बात कि यार मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए। आप यकीन करो कि आपको वो इतनी चीज़ें बताएगा कि आप ऐसे करो, वैसे करो, ये करो, वो करो, और फिर आखिर में लिखेगा भी। अगर आपको लगता है कि अभी भी समझ नहीं आ रही तो आप मुझे और बता सकते हो इसमें से, और मैं आपको और बहुत सारे तरह जो है कन्विंस कर सकता हूँ। तो मतलब कि आप तो चीज़ें बड़ी आसान हो गई हैं। देखो एक टाइम था लोगों के पास कोई टूल्स ही नहीं थे, अभी तो लोगों के पास टूल्स इतने ज़्यादा हैं। सो मैं एग्री करता हूँ इस चीज़ से कि दूसरों की राय अगर लो भी ना, करो अपनी मर्जी, ठीक है, सुनो सबकी, करो अपनी, और इसी तरह लाइफ में जो है लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों की सुनोगे तो यकीन मानो जो खुद भी करना चाह रहे होगे ना, सिचुएशंस ऐसी आती हैं कि लोगों की राय लेके आप वो भी नहीं कर पाते हो। एनीवेज जी, कॉलर देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से?
1: मैं शाहिद हूँ कश्मीर से, मीरपुरा घाट कश्मीर से। कैसे हैं आप? ठीक हैं?
0: मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ शाहिद, आप खैरियत से हो?
1: अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा जो है ना आप कर्जों की तरफ निकल रहे हैं, मैं कहूँ मैं आपको कह दूँ कि नहीं, कश्मीर ज्यादा करीब पड़ता है।
0: यार यकीन करो
1: दिल के भी और रोड से भी।
0: हाँ नहीं, दोनों जगह बहुत खूबसूरत है और मेरा दिल करे मैं दोनों जगह पहुँच जाऊँ।
1: तो बस आप पहले इधर आ जाएं तो फिर उधर चले जाइएगा, नाश्ता यहाँ और अगला नाश्ता वहाँ। अच्छा, ये डिनर तक नहीं आप पहुँच सकते।
0: अच्छा, नाश्ता यहाँ पे डिनर वहाँ पे, ये कह रहे हो?
1: एग्जैक्टली ऐसे
0: यार, ऐसे पहुंचूंगा क्या? मेरे कौन से अपने जहाज है।
1: अच्छा, इसीलिए मैंने आपने डिनर समझा, लेकिन मैंने कहा कि आज का नाश्ता यहाँ क्योंकि आप यहाँ पहुँच सकते हैं, कल का नाश्ता वहाँ क्योंकि आप डिनर तक पहुँच नहीं सकते।
0: नहीं तो एक दिन में मैं उधर भी नहीं पहुँच सकता, इतना करीब तो नहीं है।
1: कोशिश की जा सकती है।
0: नहीं यार कोशिश क्या, वो फिर बंदा बस गाड़ी चलाता रहे।
1: ये तो है। और सुना ऐसे क्या आप?
0: बिल्कुल ठीक ठाक, क्या कहना चाहोगे शायद?
1: आपने जो है ना वो जो सवाल पूछा है, एक्चुअली वो सुनने के लिए मैं तकरीबन घंटा जो है वो प्रोग्राम सुनता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा रिसेप्शन का इश्यू है आजकल में 101 के जो वहाँ इस्लामाबाद की है, चूंकि यहाँ पे काफी दूर पड़ता है, तो जब भी आप सवाल बताने लगते थे तब रिसेप्शन आउट हो जाती थी।
0: अच्छा,
1: मैंने कहा पहले सुनूंगा फिर बोलूंगा।
0: चलो चलो मैं आपको बता देता हूँ। आप, मैंने पूछा ये कि मैं बताऊँ किस चीज के बारे में सोचना या केयर करना छोड़ दिया और जिंदगी सुकून वाली हो गई है।
1: एक्चुअली इसमें दो नंबर का अगर हम जवाब कहें तो वो तो ये है कि फैमिली प्रायोरिटी, मैंने जो है ना वो प्रायोरिटी ये डिसाइड करना कि क्या चीज को ज्यादा जो है वो प्रायोरिटी देनी चाहिए और किस चीज को जो है वो सेकेंड थर्ड फोर्थ नंबर पे रखना चाहिए, एंड दैट वॉज माई फैमिली। कि फैमिली जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए इंसान की, और जो है वो अगर आप इसको रखते हैं तो आप थोड़ा सुकून में रहते हैं। दूसरा जो आपने अगर आपके पास टाइम हो तो मैं इसको थोड़ा सा एलेबरेट भी करना चाहूंगा,
0: बस ब्रीफली।
1: यस एग्जैक्टली, आई वुड इंशाल्लाह। तो इसमें ये होता है कि जो लोग अभी बात भी कर रहे थे, बहुत सारे लोगों ने बात भी की, आपने भी बीच में बात की कि जब वो पहले ये होता था या लोग यूं करते थे या ऐसे होता था। एक्चुअली होता इस तरह से है कि जो है वो जो हमारा चाइल्डहुड होता है अप टू 12 इयर्स आप कह लें, इसमें इंसान की दोस्तियां बड़ी बेलोस होती है और इंसान हर किसी को दोस्त बनाता है। जब लड़कपन आता है तो बीच में जेलसी इंटर कर लेती है और उसमें जो है वो हम फिर थोड़ा सा ये सोचना शुरू कर देते हैं कि जो है वो फलां मेरा दोस्त है तो वो किसी और का नहीं होना चाहिए। फिर जब हम तीन एज से निकल जाते हैं उसके बाद हमारी जो एज आती है, लड़कपन आता है तो बीच में जेलसी इंटर कर लेती है और उसमें जो है वो हम फिर थोड़ा सा ये सोचना शुरू कर देते हैं कि जो है वो फलां मेरा दोस्त है तो वो किसी और का नहीं होना चाहिए।

0: डिसाइड कर चुकी होती है कि हमने एक्चुअली किस चीज को प्रायोरिटी देनी है.
1: हाँ.
0: तो ये चीजें जो है वो वक्त के साथ बदलती रहती है. कभी हम अक्सर कहते हैं ना कि हम एक कान से सुनेंगे दूसरे से निकाल देंगे. जिंदगी की रियलिटी ये है कि आप ऐसा नहीं कर सकते. ये बात रिश्ते से एक रिश्ते से दूसरे रिश्ते में बात जो है वो वैरी करती है. हो सकता है कि आप किसी दूर के दोस्त के हवाले से आप ये कह रहे हैं कि जब वो मैं उसकी बात एक कान से निकालूंगा दूसरे कान से जो वो मतलब ऐसे हो जाएगा, लेकिन आप ये बात भाई के बारे में नहीं कर सकते. आप ये बात वालदैन के बारे में नहीं कर सकते. आप करीबी रिश्तेदारों के बारे में ये बात नहीं कर सकते. खूनी रिश्तों के बारे में ये बात नहीं कर सकते.
1: सही कह रहे हो, सही कह रहे हो.
0: तो जो है वो चीजें जिंदगी कोई साइंटिफिक लैब नहीं है जहाँ पे एक रूल तय हो जाए और वो हो जाए. ऐसा नहीं होता. हर इंसान के लिए हमारे तासरात, हमारी प्रायोरिटीज, हमारी जो रवाबत है, हमारे जो चूज करने का जो इंतखाब बात है, वो जो है वो बदलते रहते हैं. तो इसलिए जो है वो हर किसी भी चीज को सर पे सवार नहीं करना चाहिए. हाँ, ये जरूर मैं कहना चाहूंगा, लेकिन ये है कि जिंदगी में अपने गोल्स, अपनी प्रायोरिटीज सेट कर लें कि किसको वैल्यू देनी है, किसको नहीं देनी. आप चल रहे हैं, कोई रेडी वाला है वो आपके लिए वैल्यू नहीं रखता, लेकिन वही रेडी वाला अगर आपका भाई है तो फिर आपके लिए बहुत वैल्यू करता है. तो जो है वो आपको ये चूज करना होगा कि जो है वो किन लोगों के साथ आपको जिंदगी गुजारनी है और किन के साथ नहीं गुजारनी. बाकी जो जिंदगी ने हमारे लिए तय कर दी है, जैसे खूनी रिश्ते होते हैं, उनके बगैर आप उनको चाहें भी तो आप इग्नोर नहीं कर सकते. अगर कोई कोशिश करना चाहता है तो अपनी फूफी को इग्नोर करके देखे जरा, फिर देखे स्टेटस क्या क्या लगते हैं व्हाट्सएप पे.
1: ठीक है, सही कह रहे हो. थैंक यू शायद.
0: तो बाकी ये है कि प्रोग्राम इज गोइंग गुड. आपको मैं पहली दफा सुन रहा हूँ और उम्मीद है कि आप अगर कैजुअल बताएंगे तो मैं आईना भी कोशिश करूंगा ट्यून इन करने.
1: मेरा सिर्फ आज की रात को मंडे मिडनाइट्स को ही 12 से लेकर 2 बजे तक प्रोग्राम होता है. पूरे हफ्ते में एक ही प्रोग्राम होता है.
0: यानी जैसे ही काम वाला वीक शुरू होता है और आप आ जाते हैं कि ताकि लोग तो वो थके थके से काम पे पहुंचे, है ना.
1: बस मेरी कोशिश यही होती है. शायद ने एक बात वैसे बड़ी अच्छी की है. देखो, प्रायोरिटी, हर एक की प्रायोरिटी जो है वो डिफरेंट होती है. कुछ लोग फैमिली को प्रायोरिटी देते हैं, कुछ लोग दोस्तों को प्रायोरिटी देते हैं, कुछ लोग हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को प्रायोरिटी देते हैं. और इन्होंने कहा कि इनकी प्रायोरिटी जो है वो फैमिली है, ठीक है, और दोस्तों को इन्होंने सेकेंड कर दिया. और एक बात जो मुझे इनकी अच्छी लगी वो ये है कि जिन लोगों को आप प्रायोरिटी देते हो तो उनकी बात जो है वो एक कान से सुन के आप दूसरे कान से निकाल नहीं सकते. अगर आप कह भी दो ना, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई बहुत क्लोज फ्रेंड है और वो कोई आपको बात कह देता है और आप ये अगर इम्प्लीमेंट भी करते हो अपने ऊपर कि मैं एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दूँ, तो आपका क्योंकि करीबी दोस्त है, अगर उसने कोई बात कर दी है तो आप ऐसा नहीं कर सकते. अगर आप प्रिटेंड करो तो और बात है, लेकिन उसकी बात जो है आपके दिमाग पे घूमती रहेगी, ठीक है. इसी तरह आपके फैमिली मेंबर्स हैं, उन्होंने अगर कोई बात की है तो आपके दिमाग में घूमती रहेगी, ठीक है. उसको आप ये नहीं कह सकते कि एक कान से सुन लिए दूसरे से निकाल दिए. सो आई एग्री, ये बात बिल्कुल होती है. और मैं आपको एक बात बताऊँ कि जनरली होता है कि अगर आप किसी वैसे मिल रहे हो, सलाम दुआ हो रही है, उसके साथ बैठे हो, कभी कभी उनकी कुछ ऐसी बातें होती हैं, हर बार नहीं, कुछ उनकी कोई ज़िंदगी के हवाले से कोई ऐसी बात हो जाती है जो आपको दिमाग में रह जाती है. सो डिपेंड करते हैं सब सिचुएशंस के ऊपर. और इंसान की ज़िंदगी में सिचुएशन चेंज होती रहती हैं, ठीक है. कल कोई दोस्त था, आज नहीं है. कल कोई साथ था, आज नहीं है. कल लाइफ बहुत अच्छी थी, आज नहीं है. कल अच्छी नहीं थी, आज अच्छी है. तो इंसान की ज़िंदगी में सिचुएशंस, लोग जो हैं वो कभी कभार बदलते रहते हैं. एनीवेज जी, अभी थोड़ा स्कोर में आपको बता दूं, बेल्जियम और इजिप्ट का मैच जारी है और बेल्जियम ने भी गोल कर दिया है. और आखिरी, अब मेरे ख्याल से अगर एक्स्ट्रा टाइम हो तो 10 मिनट जो हैं अभी बाकी हैं. तो देखते हैं क्या होता है. एक्स्ट्रा टाइम पे मैच जाएगा या क्या होगा. ओके जी, कॉलर देखते हैं. अस्सलाम वालेकुम.
2: हेलो
1: जी, अस्सलाम वालेकुम.
2: अस्सलाम वालेकुम सलाम. अस्सलाम भाई, मैं अल्लाह से साजिदा बात कर रही हूँ.
1: जी साजिदा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं
2: अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक.

0: क्या कहना चाहेंगी?
1: हाँ जी, मैं कहना चाहूंगी टॉपिक के बारे में, जो आपने टॉपिक पूछा है ना, तो मैं उसके बारे में कहना चाहूंगी। एक तो हम ना लोगों के दबाव में आ जाते हैं, लोग क्या कहेंगे, हमें दबाव में नहीं आना चाहिए। एक मैंने बहुत जल्दी ना किसी पे इतबार कर लेती थी। एक तो इतबार नहीं करना चाहिए, और ये जो लोग का है ये भी हमारे बोझ होता है। जैसे एक दिमाग से ना बहुत ज्यादा टेंशन होती है, लोग क्या कहेंगे, हम ये करेंगे, लोग क्या कहेंगे, वो करेंगे। देखिए अपनी लाइफ है, हमें जो मर्जी करना चाहिए, कोई करता है, हमें वो नहीं सोचता या पूछता। अब मेरी लाइफ है, जब से मैं अपने फैसले खुद लेती हूँ तो अल्लाह का शुक्र है, मेरे फैसले या मेरी सोच या अच्छी होती है। पहले मैं कंफ्यूज हो जाती थी, मैं उससे मशवरा लूँ उससे लूँ, लेकिन मशवरे लेती हूँ, मर्जी मैं अपनी करती हूँ। अब मर्जी करने से या मैं अपना फैसला लेने से मेरी खुशहाली हो गई है, लाइफ में बहुत अच्छी हो गई है। जब तक मैं कहती थी ना मुझे कोई मशवरा दे, किसी से मीटिंग करूँ, यानी एक दोस्त जैसे हम पूछते थे, मैं बड़ों से भी मशवरा लेती थी, लेकिन वो बड़ों के फैसले तो अच्छे होते ही है। लेकिन जब से मैं कजनों से या अपना यानी सोच से चल रही हूँ ना, अब मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो गई है।
0: ओके ठीक है, डिसीजन मेकिंग आपकी अपनी होगी है, उससे लाइफ अच्छी होगी।
1: हाँ जी बिल्कुल। तो ज्यादा ये सोचते हैं जहाँ पे आके लोग क्या कहेंगे, ये हमें लोग वाला ना अपने माइंड से निकाल देना चाहिए।
0: ठीक है
1: बिल्कुल। और अगर हम निकालेंगे ना तो हमारी लाइफ भी अच्छी हो जाएगी, हमें किसी से लेना देना नहीं है, कोई यानी हमें ना कोई खाने का देता ना कोई बात, ये हम अपनी सोच से चले। हाँ अगर हमें समझ नहीं आ रही तो मशवरा ले भी लेना चाहिए किसी से, बड़े से लो किसी से ले लो, अगर मशवरा अच्छा लगे तो कर लो, नहीं तो फिर अपनी मर्जी करो।
0: ठीक हो गया, सही हो गया।
1: और आपकी बाजू का क्या हाल है भाई?
0: बस ठीक है, दुआ करें।
1: चले आपके लिए बहुत ज्यादा दुआएं, और जहाँ तक मेरी और आपकी आवाज आ रही है, सबको अस्सलाम वालेकुम और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
0: अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। और जी साजदा थी हमारे साथ लाहौर से, और आप लोगों की कॉल्स मेरे पास आ रही हैं 051-111-111 एंड 051-920-2540 पर। साथ आप मैसेजेस हमें सेंड करें, कुछ आपके मैसेज हम शामिल कर लेते हैं हमारे साथ जी। अच्छा ठीक हो गया, आयशा बतूल हैं हमारे साथ, फिर उस्मान हमारे साथ जिद्दा से हैं। आप देखें, मैंने 2025 से मतलब ही रिश्तेदार को डिलीट कर दिया अपने मोबाइल के कॉन्टेक्ट लिस्ट से भी और अपनी ज़िंदगी से भी, बस उस दिन से बहुत सुकून में हूँ। ओके अच्छा ठीक है, मैंने ज़्यादा सुना था कि मतलब ही लोग होते हैं, मतलब दोस्त यार होते हैं या इर्द गिर्द के लोग होते हैं। आपने कहा कि मतलब ही रिश्तेदार, क्यों उस्मान, क्या मतलब रिश्तेदार मतलब ही कैसे, मतलब के देखो आप जद्दा में हो जिस तरह आपने बताया, तो जब इंसान बाहर होता है तो ये मैं जनरल बात कर रहा हूँ, आपके बारे में बात नहीं कर रहा। जब इंसान बाहर होता है और उसे कोई रिलेटिव्स वगैरह पाकिस्तान में हो तो बड़ी डिमांड्स करते हैं उनसे, वो समझते हैं यार बाहर की ज़िंदगी जो है ना वो बहुत ही चंगी है, तो वो उनसे बड़ी डिमांड करते हैं, यार मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो कुछ लोग अच्छे होते हैं, वो कहते हैं यार मैं आपको पे ऑफ करूँगा, पैसे दूँगा, आप मुझे ये चीज़ जो है मुझे भिजवा देना। तो लेकिन कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं यार मुझे बस ये चीज़ ना भेज दो, वो ये नहीं देखते कि ये कितनी महंगी है। तो वो अलग बात है कि बहुत करीबी बहन भाई हों, माँ बाप हों, तो वो इन रिश्तों की और बात होती है, बहुत ही करीबी कोई दोस्त हो तो। लेकिन लोग इन चीज़ों को नहीं देखते, मैंने देखे अपने इर्द-गिर्द, लोग कहते हैं बस यार अगला बंदा मज़े कर रहा बाहर बैठा हुआ, बस उसे जो है ये चीज़ जो है मंगवा लो, उसके लिए तो मसला ही कोई नहीं, यार बाहर तो बस डॉलर लगे हुए हैं और पैसा ही पैसा। तो आप कैसे ये जरा मुझे मैसेज करके बताना, कैसे कह रहे हो, मतलब कि रिश्तेदार किस तरह मतलब ही थे और कैसे डिलीट हो कर दिया आपने उनको, और ठीक हो गया। हाँ चले जी, इसके अलावा हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं यासिर हैं, और आप कह रहे हो कि अच्छा आप कह रहे हो कि मैंने ये क्या आपने लिखा है, अच्छा जब से पेट्रोल महंगा हुआ है मैंने दोस्तों को पिक करना छोड़ दिया है, अब میری زندگی بہت سکون میں ہو گئی ہے. یہ بڑا ڈفرینٹ سا جواب آپ نے دیا. اور اچھا ٹھیک ہے, تو یہ تو آپ دیکھو, آپ پہلے سوچنا چاہیے نا کہ پیٹرول جو ہے وہ آبویسلی مہنگا ہو گیا ہے. اور لیکن جہاں اچھے دوستو یار وہاں پہ یہ چیزیں نہیں سوچی جاتی کہ یار ایسا کرنا ہے ویسا کرنا ہے یہ ہونا ہے وہ ہونا ہے. تو میرے خیال سے کہ چلتا ہے, سب کچھ چلتا ہے. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ دوستوں کو بھی آپ کو پک کرنا پڑ جاتا ہے, پھر آپ کیا کرو گے؟ دوستوں نے آگے سے آپ کو کہا کہ بھائی تم نے تو مجھے کہا تھا کہ آپ پیٹرول مہنگا ہو گیا تو میں نے پک نہیں کرنا, ابھی کیا آپ تھا کل 100 روپے کا پیٹرول ہو جائے پھر کیا کرو گے؟ اچھا چلے جی آپ کی مرضی ہے. اوکے جی ابھی کالز کا سلسلہ یہاں پر روکتے ہیں اور میسیجز آپ کے جو ہیں یہاں پر ہم ختم کرتے ہیں. اور آپ سے آج کے پروگرام میں میں نے پوچھا تھا کہ مجھے بتائیں کہ کیا ایسی بات ہے جس کے بارے میں آپ نے سوچنا چھوڑ دیا, کیئر کرنا چھوڑ دیا اور لائف آپ کی کافی پیسفل ہو گئی ہے.

गाइस जी, अभी टाइम आके आपसे इजाजत लेने का और मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, तो आपका मेरा साथ जो है फिलहाल मंडे मिडनाइट रात को 12 से 2 बजे तक एफएम वर्मा इंटरनेशनल में ही रहता है, और चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे टिकटॉक हो, चाहे स्नैपचैट हो, आप मेरा नाम लिख सकते हो हसनैन रज़ा, HASNAIN स्पेस RZA हसनैन रज़ा, और मुझे सर्च करके मुझे फॉलो कर सकते हो, कोई बात करनी इनबॉक्स कर सकते हो। सो अभी लास्ट ट्रैक प्रोग्राम में प्ले करने जा रहा हूँ, लास्ट ट्रैक आपके लिए मैंने क्यों किया हुआ, कैफे खलील की आवाज में ट्रैक मंसूब। सो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। हसनैन रज़ा साइनिंग ऑफ नाउ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।

साथ दिल के चले, दिल को नहीं रोका हमने, जो न अपना था उसे टूट के चाहा हमने, एक धोखे में कटी उम्र हमारी सारी, क्या बताएं किसे पाया किसे खोया हमने।

This is FM 101.

खत्म।

0: अगर सच्चे हो तो हम पर आसमान से एक टुकड़ा ला गिराओ।
1: قال ربي اعلم بما تعملون
0: शुएब ने कहा कि जो काम तुम करते हो मेरा परवरदिगार उससे खूब वाकिफ है।